सुप्रभात। FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जयपुर का विविध भारती केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई 2026। इस समय सबेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। प्रस्तुत है वंदनवार, आइए सुने भक्ति संगीत।

विविध भारती से झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओ, अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 259। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार हैं गायक और संगीतकार रविंद्र जैन। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। 7:00 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम होगा। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार मनोज कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

दिन में 10 बजे पिटारा लाएगा आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग। 12 बजे होगा कार्यक्रम। 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिएगा फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। कहानी जिंदगी की यही रीत है, आपको सुनवाएंगे लेखिका रिद्धि चोरड़िया। वाचन और संपादन नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:05 से इसी कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम आप सुनेंगे।

शाम 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला घुंघरू की तरह आप सुनेंगे। 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत का 4th भाग आपको सुनवाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 8:00 होगा कार्यक्रम हवा महल। सुनिएगा हास्य नाटिका बहादुरी, लेखक राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक बिजेंद्र मोहन। 9:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर फिल्मकार मनोज कुमार पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात 10 सुनिएगा छाया गीत। और रात 10:30 पर

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवीं भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विशास से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 269।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, तो आज हम फिर हाजिर हैं। दादा का एक बार सत्कार करता हूँ। नमस्कार दादा। हमने कई रागों के बारे में बातचीत की, आपने रागों के बारे में बहुत कुछ बताया और ऐसे रागों के बारे में बताया जिसमें आपने फिल्मी गाने निबद्ध किए और वो बहुत मकबूल हुए। आज उसी शास्त्रीयता को बरकरार रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हम फिर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गीतों के बारे में, शास्त्रीयता के बारे में और फिल्मी गीतों के बारे में आपसे सुनेंगे।
2: एक प्राइमरी राग जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा काम किया हमारे सारे कंपोजर्स ने। ख़ास तौर से रोशन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए और मदन जी ने बड़ा अच्छा गाना बनाया, जिया ले गए मेरा सांवरिया, है ना
1: जी जी।
2: रोशन साहब के तो
1: बहुत गाने हैं उन्होंने,
2: बहुत गाने
1: यमन
2: में
1: बहुत काम किया है।
2: मेरा भी ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किया है।

0: दादा, जैसे कि हर संगीतकार के अपने कुछ पसंदीदा राग होते हैं, आपके शास्त्रीय संगीत की जो चादर है बहुत बड़ी है और उसमें न जाने कितने गीत समा गए बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से। तो आपके भी कुछ राग ऐसे होंगे मखसूस, ख़ास राग जो आपको बहुत पसंद होंगे और मौका मिलते ही आपने उन रागों पर या उसी एक राग पर गाने बनाए होंगे, उसके बारे में कोई विवरण दें।
1: यूँ तो हर राग बहुत अच्छा सजाया है हमारे बुजुर्गों ने
0: जी,
1: उनकी उन पर बलिहारी है जिन्होंने ये राग कंपोज किए हैं, जिनको जिनको सोचा है।
0: क्या कहने,
1: हम लोग तो उसका इस्तेमाल भर करते हैं, वो भी मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया
0: जी
1: कि अपनी आत्मा अगर उसमें डाल दें तो कोई बात बन जाती है।
0: जी
1: वैसे राग वो जिसमें अनुराग हो, बस
0: क्या
1: अनुराग
0: बात है,
1: सबसे
0: क्या
1: अच्छा राग
0: कहने,
1: है।
0: क्या कहने, वाह।
1: तो और हमारे शास्त्रों में कहा है कि रंजको जन चित्तानाम सराग कथितो बुधा, जो चित्त का रंजन करे,
0: वाह,
1: उसकी परिभाषा ये है।
0: बहुत सुंदर।
1: ऐसे मुझे माइनर कॉर्ड्स के राग जो है ना
0: जी,
1: दूर के पसंद हैं ज़्यादा।
0: जैसे
1: बहुत सारे उसमें हैं, कई कई राग जो इस तरह के हैं ना जो माइनर नोट्स में हैं। भैरवी थाट के बहुत सारे राग हैं, भैरव थाट के अपने राग जो है ना
0: जी
1: बड़े अच्छे अच्छे हैं। उधर पूर्वी थाट के राग हैं, वो सब बड़े सुंदर सुंदर राग, उनकी उनमें एक अजीब उसमें एक आकर्षण है और एक ठहराव है।
0: जी
1: लेकिन अब फिल्मों में चूँकि हमें न्याय करना पड़ता है चरित्रों के साथ।
0: हाँ, सिचुएशंस की भी अपनी
1: हाँ
0: दरकार होती है। लेकिन आप कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित किया
1: जी
0: हो
1: जी
0: और
1: जी
0: आपको पसंद हो।
1: आशा जी ने मेरे गीत गाया, वो आजकल बहुत लोग उसको सारे तमाम कलाकार गाना चाहते हैं।
0: वाह, ज़रूर।

0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत का जिक्र चला है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म उद्योग में बहुत से कलाकार गा रहे हैं या अन्य स्थानों पर भी लोग गा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी उनके लिए कितनी ज़रूरी है, इसकी सार्थकता पर थोड़ा सा आप बताएंगे?
1: यूँ तो संगीत मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है उसका, लेकिन अगर संगीत का मर्म जानना है, रहस्य जानना है, तो शास्त्रीय संगीत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये गंधर्वों की विद्या है, देवों की विद्या है,
0: जी
1: मनुष्यों को कहाँ उपलब्ध हो सकती है, तभी होगी जब समर्पण भाव से उसको सीखें।
0: सही बात है। आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों का, गायकों का, कलाकारों का ये कहना है कि कोई

0: जरूरत नहीं है शादी संगीत सीखने की, और जैसा गाना मिला है सिनेमा के सिचुएशन पर गा दिया जाए। तो उन गानों की उत्पत्ति को आप कितना महत्व देते हैं जो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के बने बनाए और गाए जाते हैं?
1: मैं भी उसी
0: क्षेत्र में हैं,
1: उसी मतलब इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। और लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उम्र जो है ना वो हर एक की अलग अलग है
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20 है,
0: जी जी
1: है ना
0: जी जी।
1: तो इसी तरह गानों की भी आयु जो है ना वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो आए गए कब, आए कब चले गए
0: पता ही नहीं चलता।
1: हाँ, बाद में ये लगता ही नहीं कि ये गाने भी हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: गाना
0: है।
1: नहीं लगता, वो कुछ और ही लगता है।
0: कुछ देर के लिए लगता है, कोई तराना सा उठा फिर कहीं जाके दब गया।
1: हाँ
0: और
1: ठीक है,
0: खत्म हो
1: बस
0: गया।
1: मगर ये है कि जब प्रसिद्धि जिसको मिल जाती है, जो चीज़ पसंद लोगों ने कर ली है, लाखों लोग करोड़ों लोग जिसको गाते हैं,
0: जी
1: उसको ख़राब कहना भी मुश्किल है।
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ
0: सही
1: जी
0: बात है। इसका मतलब ये कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी नितांत आवश्यक है
1: बिल्कुल
0: अगर एक
1: बिल्कुल, उसके
0: संपूर्ण
1: सिवा
0: गायक
1: तो
0: बनना
1: रास्ता
0: है, इसके सिवा कोई
1: नहीं।
0: रास्ता नहीं।
1: जी
0: चलते चलते आज की इस कड़ी में कोई एक और गीत आपका ही निर्मित किया हुआ किसी शास्त्रीय राग पर।
1: मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिस रचना पर फिल्म बनाई गई। श्री राज कपूर जी ने ये गीत सुना और इस पे कहानी सोची, इसके आधार पे कहानी का ताना बना हुआ। ये गीत राग किरवानी में निबद्ध है। मैंने कोशिश की है कि राधा और मीरा दो चरित्र हैं इस गीत में, दोनों के साथ न्याय करूं। साहित्यिक पक्ष भी इसका अच्छा बन पड़ा है।

0: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी श्रोताओं का हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

फिल्म अमानुष का गीत था किशोर कुमार का गया। इंदिवर के बोल थे श्यामल मित्रा की तर्ज थी। फिल्म छोटी सी मुलाकात, लता मंगेशकर की आवाज़।

शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, फिल्म थी छोटी सी मुलाकात। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीता दत्त को आपने सुना, फिल्म थी श्रीमती 420, जानुसार अख्तर के बोल थे, ओपिनियर का संगीत था।

0: पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे वसंत देसाई की तरफ से, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म थी तूफान और दिया।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्ताने।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्युलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
6: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: मुकेश की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी पत्थर के सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भूले बिसरे गीत श्रोताओ यहीं संपन्न हुआ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में। संतोष आनंद के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, हरियाली और रास्ता। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

हरियाली और आस्था इस फिल्म का गीत था शंकर जय किशन का सर्वदिक्या। हम मेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सरबत किया ये गीत आप सुन रहे थे।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

श्यामल मित्रा की तर्ज थी इंदिवर का लिखा गीत आपने सुना। आनंद आश्रम फिल्म का ये दो गाना था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। हमेरा ही प्यार के श्रोता, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
5: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
6: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
7: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा

0: के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
6: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। माधाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से

वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। श्रोताओ,
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
7: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: बेला शिंदे की आवाज़ में जोधा अकबर फिल्म से ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था। श्रोता विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का।

0: नीरज चौहान की आवाज में इरशाद कामिल की रचना आपने सुनी। एआर रहमान का संगीत था, फिल्म थी तमाशा।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार की आज जन्म जयंती है, और जिन्हें हम जिनका मूल नाम कह सकते हैं कि हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ। 1957 में आई फिल्म फैशन से मनोज कुमार ने अपने अभिनय की शुरुआत की। मनोज कुमार वैसे तो तमाम फिल्मों में नजर आए, लेकिन कुमार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों में अभिनय के लिए खास तौर पर जाने गए, और इसी कारण उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। 1965 में आई फिल्म शहीद में उन्होंने भगत सिंह की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें एक देशभक्त अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1967 में फिल्म उपकार से निर्देशन की शुरुआत की उन्होंने, और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति उनकी बहुत लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हैं। अभिनेत्री माला सिन्हा, साधना, आशा पारेख और तमाम ऐसी अभिनेत्रियां थीं जिनके साथ उन्होंने अभिनय किया, और इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। वैसे मनोज कुमार संजीदा अभिनय के लिए भी पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्म फैशन, सहारा, हनीमून, कांच की गुड़िया, पिया मिलन की आस, रेशमी रुमाल, डॉक्टर विद्या, हरियाली और रास्ता, शहीद, और अगर थ्रिलर फिल्म की बात करें तो फिल्म गुमनाम, इसके बाद फिल्म नीलकमल, ऐसी तमाम चर्चित फिल्मों में मनोज कुमार ने अभिनय किया। शशि गोस्वामी उनकी शरीके हयात हैं। हम अभिनेता मनोज कुमार की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

0: हम विविध भारती जयपुर से बोल रहे हैं 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद विद्यार्थियों के हित में पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित कराना आवश्यक था।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों ने निरंतर कार्य किया और कल देर रात इसका मसौदा प्रस्तुत किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित विधेयक को पारित किया जाए।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से चिकित्सकों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने और जल्द स्वस्थ होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में उनसे जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करने की भी कामना की। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी के स्थान पर नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्ति दी गई है। श्री गंगवार राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और राजस्थान में शिक्षा सचिव रह चुके हैं। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने नई परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा है। कल जयपुर में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, पुष्कर सरोवर, पुंछरी का लौठा, खाटू श्यामजी मंदिर, बेणेश्वर धाम और रामदेवरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सड़क, पेयजल, बिजली, विश्राम स्थल और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान गुरु पूर्णिमा और रामदेवरा मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही प्रदेश के पैनोरमाओं के संरक्षण, रखरखाव और देवस्थानों से जुड़ी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में अब 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। राज्य पुलिस की ये नई व्यवस्था कल से लागू हो गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। E0 FIR के तहत शिकायत मिलते ही संबंधित मामले में बिना देरी के FIR दर्ज कर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। पहले ये व्यवस्था 5,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में लागू थी। राज्य पुलिस के अनुसार 1,00,000 से 1,00,000 रुपए तक के मामलों की जांच जिला स्तर पर, जबकि इससे अधिक राशि के मामलों की जांच राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर करेगा। राज्य सरकार की ई मित्र व्हाट्सएप सेवा के तहत अब 21 और नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसके माध्यम से बिजली और नगरीय सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। इसके तहत बिजली बिल डाउनलोड करने, शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति जानने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, UD टैक्स और स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस सहित कई नगरीय सेवाएं भी व्हाट्सएप पर मिलेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने बताया कि सेवा शुरू होने के बाद अब तक 1,40,000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। इन सेवाओं को जल्दी ही ई मित्र मोबाइल ऐप और ई मित्र कियोस्क से भी जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रमों में कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर राज्य की समग्र रैंकिंग में सुधार लाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास सूचकांकों पर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय समावेशन से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीनिवास ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 22 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बीकानेर, उदयपुर और सलुम्बर समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। सलुम्बर के झालरा में 62 मिलीमीटर पानी बरसा। कल अजमेर, अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, प्रतापगढ़, सिरोही, सीकर, राजसमंद, झुंझुनू, जालौर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर सहित अन्य शहरों में बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। उधर भीलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों और कुछ मवेशियों की मौत हो गई। बरसात के कारण कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की आवक जारी है। पाली जिले के जवाई बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है और जलस्तर बढ़कर 31 फीट पहुंच गया है। वहीं डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से बेणेश्वर धाम टापू बन गया है। इस तक पहुंचने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मॉनसून सक्रिय रहेगा। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1,00,000 रूपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। सबेरे के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुने FM रेडियो पिंक सिटी के कार्यक्रम।

0: lovely morning chit chat only on 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khaas hai, kuch to baat hai. फ्री स्टाइल कुश्ती की तरह फ्राइडे आता है, कई बार तो वीकेंड की प्लानिंग में ही निकल जाता है, और रेडियो पिंक सिटी न्यू रिलीज्ड मूवी की तरह मिलता है। हर पल आपकी म्यूजिक का टेस्ट बदलता है। बच्चन के बोल बच्चन से रजनी के स्टाइल तक, शाहरुख की एक्टिंग से आमिर की स्माइल तक, ट्यून करो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: नमस्कार, 12:26 हो रहे हैं, और इसी तरीके से मतलब हर परेशानी को इस तरीके से उठाकर पटक देना जो स्टाइल है शुक्रवार का। 100.3 FM पर मैं हूं तरुण, और आप सुन रहे हैं लवली मॉर्निंग चिट चैट। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और अब शुक्रवार की सुनहरी सुबह में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत तो मैं करता हूँ, साथ में ये भी कहता हूँ कि अगले 50 मिनट जो हैं वो मुस्कान भी होगी, बातें भी होगी, गाने भी होंगे, कुछ ऐसी बातें भी होगी जो शायद आपको लगेगा कि आपका दिन और भी खूबसूरत बना दिया। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, या बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, या कोई काम से जा रहे हैं, या घर पर सिर्फ चाय और कॉफ़ी की चुस्की ली जा रही है, तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, और तरुण आपके साथ है। और एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि एक कोटेशन सुबह सुबह सुन लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए, ताकि लाइफ में उसे अप्लाई किया जा सके। तो ज़िंदगी एक आईना है, जितना मुस्कुराएंगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा, है ना। मुस्कुराइए, आप हैं 100.3 FM के साथ।

श्रोतागण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 100.3 पर एक गाना पहुंच चुका है और दूसरा चलने के लिए तैयार है। सुनते रहिए सॉन्ग पे सॉन्ग, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी।

लव यू जिंदगी, क्या गाना है यार, बहुत अच्छा है। 9:22 और 47 सेकंड हो रहे हैं, मैं हूँ तरुण और जिंदगी से ऐसे ही प्यार करना चाहिए, और यही बात जो है आज के दिन को सार्थक करती है, क्योंकि कभी कभी बस सुनने की ज़रूरत होती है कि भाई हाँ सुना जाए, कि अच्छे से समझा जाए कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। कहने शब्दों में बहुत पावर होती है। अगर हम कहें कि जिंदगी अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं लगेगी, अगर हम कहेंगे खूबसूरत है तो खूबसूरत दिखेगी, बस उसे महसूस करना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे तरुण आज इतना ये ज़िंदगी कैसे, तो भाई आज दो खास मौके हैं, आज का दिन यानी 24 जुलाई भाई आज आयकरदाता दिवस है, जी हाँ हम सब इनकम टैक्स भरते हैं ना, और दूसरा आज ही के दिन इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे भी मनाया जाता है, मतलब अपनी देखभाल करने वाला दिन। तो पहली नज़र में तो दोनों का रिश्ता एक सा नहीं लगता, लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर जोड़ कर देखें तो दोनों एक ही बात सिखाते हैं। आयकरदाता दिवस जिम्मेदारी सिखाता है और देश के प्रति जिम्मेदारी उसमें नज़र आती है कि भाई हम टैक्स देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है देश आगे तरक्की करता है, और दूसरी बात अपने प्रति, दूसरी तरफ हम सेल्फ केयर डे की बात करें तो अपने लिए, तो हम देश के लिए टैक्स देकर अपना फ़र्ज निभाते हैं, लेकिन क्या हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी मुस्कान के लिए भी थोड़ा समय निकालते हैं? ये जिम्मेदारी भी अपनी ही है, तो इसके लिए आज आप सोचिए क्या आप निकाल पाते हैं कि भाई थोड़ी देर मैं समय निकाल कर मुस्कुरा लूँ, या थोड़ी देर मैं अपने मन का कर लूँ। तो आज का दिन यही याद दिलाने वाला है कि आप अपनी केयर कैसे करते हैं और अपने देश की केयर इनकम टैक्स चुकाकर कैसे करते हैं। तो ये दोनों ही बातें, बहुत सी बातें इन पर करेंगे। अभी पैसे को लेकर ही गाना सुनाता हूँ मैं, क्योंकि पैसा जो है उसके ऊपर बहुत से गाने भी बने और ज़रूरत भी हो जाती है, लेकिन प्यार या पैसा दोनों में चुनना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा तो आता जाता रहता है।

0: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट,
1: राहुल अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ,
0: पापा का कहना
2: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू,
0: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना,
3: क्या यार इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ ठूसो,
0: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना,
4: अब मुंह मत बना, ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी,
0: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा,
5: एक बात बताओ यार किसी से कहेगी तो नहीं ना, पक्का पक्का ना,
0: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है, ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी,
6: कुछ तो खास है कुछ तो बात है।
7: हेलो
8: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
7: फिर से
9: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे,
10: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे।
7: सर इतने कहाँ से?
10: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए,
9: 2 लाख भेजिए बाकी बाद में।
7: सर 2 लाख
11: क्या हुआ पापा?
7: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
9: अरे
7: काट दिया।
11: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
7: फ्रॉड?
11: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाय, मैं हूँ जॉन अब्राहम और जिंदगी में रफ्तार लाओ, सुनते रहो
2: रेडियो पिंक सिटी
1: और जीतो तरुण के साथ हैप्पी बीए।
3: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: Temperature update. Only on 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: 9:36:45 हो रहे हैं जयपुर। और देखिए, अभी गाने में तो बारिश हो रही थी पैसों की। वैसे बारिश तो मुश्किल होती है, होती नहीं है कहीं, मतलब किसी किसी के पास हो जाती है, पकड़े जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये है कि असल ज़िंदगी में पैसों की बारिश तो नहीं, लेकिन हाँ, ये जो पानी वाली बारिश होती है, जो हम मानसून में इंतज़ार करते हैं कि भाई बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी। तो टेम्परेचर आज का जयपुर में क्या कहता है, क्या चांस है कि नहीं है, मैं बता देता हूँ। वैसे आज जो पूरा मौसम जो है बादल वाई रहने वाली है, कहते हैं ना बादल वाई रहेगी, यानी बादल छाए रहेंगे। और आज अभी जो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस है, 27, तीन बढ़ जाएगा, मैक्सिमम होगा 30 तक जाकर, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मिनिमम जो है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, मतलब -2 और हो जाएगा। तो 25 तक पहुंचेगा, 30 तक ऊपर जाएगा, अभी 27 है, बादल छाए रहेंगे। लेकिन तरुण, बारिश का क्या है? देखो, ऐसा है जो प्रेडिक्शन कह रहे हैं, 1 बजे के आसपास तकरीबन 65% चांस है कि बारिश होगी, ये प्रेडिक्शंस हैं। बाकी तो ठीक है, होगी तो क्या पता पहले भी हो जाए, थोड़ी देर बाद हो जाए, लेकिन ये प्रेडिक्शंस हैं। तो मौसम तो पारा सिंह जी ने बता दिया, अब गाना कौन सा प्ले करें। लेकिन इसमें मैं आगे कुछ बातें जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, सेल्फ केयर से जुड़ी हुई है। अभी तक तो हमने पैसों की बातें कर ली, और पैसे तो ये बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश के लिए अपना जो योगदान देना। वो योगदान कैसे दिया जाता है, ये हम इनकम टैक्स के ज़रिए देते हैं। आज आयकरदाता दिवस है, तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, समय से रिटर्न फाइल करनी चाहिए, और आप चाहे निल की करें, लेकिन आपको करनी चाहिए कि भाई मैंने इनकम टैक्स, पैन कार्ड वगैरह, आजकल तो सब जगह बिना पैन कार्ड के बात नहीं होती, तो अपना ये काम करना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं कि नहीं नहीं शायद हम इनकम टैक्स के लिए भर देंगे तो फिर आगे से हमें परेशानी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमेशा फाइल कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब हम कोई लोन भी ले रहे होते हैं ना, तो उसके लिए भी जो बैंक्स पूछते हैं कि अच्छा आपकी ITR दिखाइए, तो फिर नहीं होती, तो फिर नहीं मिलता है। तो इसलिए लेना चाहिए, करना चाहिए ये, ठीक है। और इसके लिए CA बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए, नहीं तो खुद भी आजकल खुद भी भर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कॉमर्स पढ़े हैं और कुछ जानकारी रखते हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। AI का ज़माना है, उससे हेल्प लेके भी पूछा जा सकता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ, बहुत मतलब अब ये फिक्स नहीं है कि किसी से पूछ के ही काम होगा, आप पहले से जानकारी ले सकते हैं। 9:39:10 हो रहे हैं, और गाना जो है वो राबता वाला बजाता हूँ कि आजकल क्या है, AI से इंसान का राबता हो गया है, तो एक जोड़ हो गया ना, उससे काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं, पर उसको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए जितना वो लाइफ को अच्छा लगे। ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जते।

निकिता गांधी ही अरिजीत सिंह की आवाज रावता का गीत 9:44 100.3 FM कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। दिस इज मी तरुण और आज अपनी केयर करने वाला दिन है। तो एक सवाल मैं पूछूं आपसे कि जैसे हम कोई भी सुबह सुबह निकलते हैं, कभी आपने सोचा है कि भाई मैं कभी निकल जाऊं ऐसे बिना कोई मतलब बिना किसी मंजिल के, यूं ही सुबह सुबह घूमने निकल गए कार लेकर या बाइक लेकर या साइकिल लेकर बिना किसी मंजिल के, बस यूं ही, और सुबह सुबह ड्राइव की हो, चाहे हेडफोन में गाना सुना हो या फिर कार में सुन रहा हो, और कौन सा गीत जो है बार बार बजने लगता है ना, वो जो गीत होता है ना वही हमारा तराना होता है जिसको हमें सुनाने का मन करता है। एक तराना ज़रा सुनाना। तो अब ये सेगमेंट है, आप इसमें कॉल करिए और आज जिंदगी के लिए कौन सा गीत है जो कि आपके मन में हमेशा गुनगुनाते हैं आप, क्योंकि सेल्फ़ केयर के लिए, सेल्फ़ केयर सीधे से ज़िंदगी से जुड़ गया, क्योंकि हम जिंदा तभी हैं जब ज़िंदगी है। और ये अगर इसमें गाने को जोड़कर एक सवाल और पिरो दिया जाए तो ये कि अगर आपको आज के दिन पूरे दिन में से 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट आपको अपने लिए मिल जाए, अपने लिए, तो क्या करेंगे आप? ये हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर लिखकर बताना। ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे मोबाइल चलाएंगे सिर्फ, नींद पूरी करेंगे, किताब पढ़ेंगे, या फिर किसी अपने से दिल खोलकर बात करेंगे, वो फेसबुक वाली नहीं, फेस टू फेस वाली। तो आप रेडियो पिंक सिटी जो फेसबुक पेज है वहाँ जाकर ये ज़रूर बताइए कि आप इनमें से क्या करेंगे, नींद पूरी करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, या किसी से दिल खोलकर बातें करेंगे। 30 मिनट आपको अपने लिए मिले जब, तो आज का दिन यही है। तो बताइए, मैं फिर आपके जो वो जो आप बताएंगे ना तो वो ऑन एयर भी बताऊंगा। और इसके अलावा भी कुछ आप सोचते हैं कि अगर 30 मिनट मुझे मेरे लिए मिल जाए तो मैं क्या करूं? वैसे तो पूरा समय ही अपने लिए होता है, पर हम लोग जीवन की उहापोह में उलझन में ऐसे उलझे होते हैं, खुद को भूल जाते हैं। जैसे वैसा होता ना कि अपने आप को मोबाइल पे फ़ोन लगाया तो बिज़ी मिला, क्योंकि खुद को ही लगा रहे हैं तो बिज़ी मिलेगा ना। मैनेज हो सकता है, लेकिन क्या हम मैनेज नहीं करते हैं, हम सोचते रह जाते हैं। अभी गाना प्ले करता हूँ, ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं, और इसी के साथ में फिर एक तरह ना ज़रा सुनाना भी ऑन हो चुका है, और ये सवाल वाला सिलसिला कि आपको 30 मिनट मिले तो आप क्या करेंगे।

नरेंद्र खुरानिया कहते हैं वहाँ से सोडाला कुमावत नगर से, वो कहते हैं कि मैं अगर मुझे 30 मिनट वक्त मिले तो मैं एक ऐसी गहरी नींद सोना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब रात में भी बहुत भाग दौड़ इधर उधर काम के चक्कर में वो दिमाग चलता रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि दिमाग 30 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहे और मैं आराम से 30 मिनट तो सो सकूँ। मतलब ये देखिए, ये ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि हम सेल्फ़ केयर में ये भूल गए हैं कि हमारी नींद कितनी 6-7 घंटे की जो है वो होनी चाहिए बिना टूटे। लेकिन अब चूँकि क्या है, कई चीज़ें होती है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को क्या चीज़, तो बीच में किसी को टॉयलेट के लिए भी जाना पड़ता है, तो वो नींद टूट जाती है। तो बात खैर ये चीज़ अलग है, ये कुछ हेल्दी वाली बातें हो गई हेल्थ को लेकर, लेकिन हम अपने आप को सोने के लिए तैयार नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छा एक मैसेज और है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब मैं मोबाइल मैंने ख़रीद लिया एक नया अच्छा वाला, पर जब तक मेरे हाथ नहीं दुखना शुरू हो जाते तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। मतलब रात में मैं हाथ दुख जाए तो फिर मैं छोड़ता हूँ, फिर मैं रखता हूँ तो उस पर मैं टीवी देखने लग जाता हूँ। ओवरऑल वो है मेरा ज़िंदगी इसमें चली गई, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से 30 मिनट के लिए तो कम से कम मोबाइल दूर हो जाए। नाम इनका अविनाश वर्मा। अब देखिए ये मोबाइल भी आजकल इतना ज़्यादा एक तरीके से वो है ना, अति सर्वत्र वर्जते वाली बात है कि कहीं ना कहीं एक जहर सा क्रिएट हो जाता है लाइफ में। तो लाइफ को ईजी बनाना चाहिए, खूब घूमना फिरना, अपने आप से बातें करना। काफ़ी दिन हो गए ना अपने आप से बातें किए हुए, हालांकि अपने आप से बातें करते हैं तो लोग कहीं रास्ते में मत करना वरना लोग सोचेंगे कि क्या है। पर वैसे आजकल लगता भी है हेडफोन पे कोई बात करता हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो खुद से ही बात कर रहा है। लेकिन जितना हो सके हमें नेचर के साथ रहना चाहिए, और जो ये डिजिटल ज़िंदगी में हम ये भी ज़रूरत है, पर इसका जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग हो, और फिर ज़्यादा हो जाता तो एक्सेस में तो हम एक्सेस तो होता है ख़राब हो जाता है। हनी भाटिया फेसबुक पर कहते हैं कि मुझे अगर अपने लिए टाइम मिल जाए तो मैं वृद्धाश्रम जाऊं, वहां बुजुर्गों से बात करूं, बड़ा मज़ा आता है जब वो बच्चों जैसे हंसते हैं बोलते हैं, मेरी माँ भी ऐसी ही थी। अच्छा ऐसी ही थी, ओके। तो ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक स्टेशन की तरह है, कोई उतरता है कोई चढ़ जाता है साथ में मिलता है, तो ज़िंदगी यूँ ही चलती रहती है। पर ज़िंदगी में अपने लिए वक्त निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी कौन सा गाना प्ले करें, अब ये गाना प्ले करते हैं, जिंदा जिंदा जिंदा, वही है जो अपने लिए, जो अपनी लाइफ के लिए कुछ समय निकाले। बाकी समाज सेवा बहुत ज़रूरी है।

नौ बजकर 57 मिनट जिंदा क्या एनर्जी मिल गई ना, 9:57 और 53 सेकंड हो रहे हैं। मैं हूं तरुण और देखो अब ये जो लवली मॉर्निंग चिट चैट में इसमें खास एक बात बताता चलूं, उसके बाद तो हम गीत मेरे बीच में चलेंगे। तो आज एक छोटा सा वादा कर लेते हैं, आप भी करिए मैं भी करता हूं अपनी ज़िंदगी से, कि रोज़ कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, सिर्फ आधा घंटा निकाल लें बहुत है। थोड़ी वॉक हो, थोड़ा संगीत हो जाए, या थोड़ी हंसी खुशी का मौसम हो जाए, या बस अपने साथ ही कुछ पल हो जाए। और हाँ एक बात और, ईमानदारी से टैक्स भरें और ये याद रखें कि आप सिर्फ एक टैक्स पेयर नहीं हैं, देश की तरक्की के साझेदार हैं, जिम्मेदार हैं। और सभी आयकरदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं आज के लिए, और सभी के लिए जो सेल्फ केयर कर रहे हैं अपनी, उनके लिए भी। तो अब चलते हैं ये ज़िंदगी में ठानते हुए कि उम्मीदों का नाम है ज़िंदगी, चलते रहना चाहिए। और एक छोटी सी बात, अपने लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं होता है बॉस, समझदारी होती है। इसलिए आशाएं रखिए, बढ़ते जाइए आगे, कोई रोकने वाला नहीं है। होप बहुत बड़ी चीज़ होती है।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: हाय, मैं हूँ ना सोनू, सोनू निगम। लाइफ में जीतना सीखो, सुनते रहो
7: 100.3 FM, रेडियो पिंक सिटी।
6: तरुण के साथ क्या पता कल होना हो।

नितिन मुकेश की आवाज़ लता जी के साथ में, और ये क्रांति फिल्म का गीत, और गीत मेरे मीत, देखिए क्या बात है, जोड़ी हो गई। 10:11 और 25 सेकंड हो रहे हैं, मैं हूं तरुण, और क्रांति के इस गीत के साथ में आज हम आगाज़ करते हैं गीत मेरे मीत में उनके गीतों का, जो कि भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्हें हम भारत कुमार के नाम से जानते हैं, मनोज कुमार

आपका जन्मदिन है, तो आज क्यों ना गीत मेरे मीत में वही गीत हों जो कि उनके फिल्मों से लिए गए हों, और कुछ गीतों की ऐसी खास बातें भी बताई जाए जो कि उन्होंने बिल्कुल अड़कर अपने संगीतकार को भी कहा, नहीं साहब ये तो ऐसे ही होगा, उन चीज़ों की बात करें। और साथ में ये भी बात करें, 2200-8000 पर आप फ़ोन करके बताएं कि कौन सा ऐसा गीत है जो मनोज कुमार साहब का है और वो आपका मीत बन गया, मतलब जो गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्यों पसंद है ये बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि तरुण मुझे ये गाना सुनना है, नहीं वो नहीं, कोई गाना जो उसके पीछे कोई कहानी भी होनी चाहिए, क्यों वो आपका मीत बन गया, है ना। तो वो गाना मनोज कुमार जी की फिल्म से कोई सा भी हो सकता है जो आपका मीत बन जाए, मीत बन चुका है, हमेशा गुनगुनाते हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा। फ़ोन लगाइए 2200-8000 पर और फेसबुक पेज रेडियो पिंक सिटी का, वहाँ पर जाएं और आज की पोस्ट, आज का जो है वहाँ पर कमेंट कर दें और बताएं। अभी मैं आपके लिए प्ले करता हूँ वो गीत जो बड़ा ही प्यारा है, और ये गीत जो है दूरदर्शन के स्टूडियो में शूट किया गया था, मनोज कुमार साहब, हेमा मालिनी, कौन सा गाना है ना बताओ बताओ, अरे वाह क्या बात है, मैं ना भूलूंगा, सही है।

बहुत ही प्यारा गीत है, यहाँ मुकेश की आवाज़ साथ में लता जी की आवाज़, और फिल्म का नाम जो है वो भी बड़ा प्यारा सा जी। और ये जो फिल्म थी ना रोटी कपड़ा और मकान, ये बहुत ही गज़ब की फिल्म रही। कैसे अमिताभ बच्चन साहब को इसमें रोल मिला, मनोज कुमार साहब की जो अभिनय और जो इस फिल्म की बात है वो अलग ही बात है। तो इनका जो फिल्म बनाने का तरीका, फिल्म निर्देशन का तरीका, फिल्म की पटकथा लिखने का तरीका या एक्टिंग करने का तरीका, ये अपने आप में बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग सा। तो इनके गीतों को हम सुन रहे हैं, तो थोड़ा इनके बारे में बताओ। तो इनकी जब ये संघर्ष करते थे ना, मतलब स्ट्रगल, शुरुआती दौर को हम जब ये फिल्मों में काम करने की सोच रहे थे मौका मिल जाए, तो इनके साथ में जो दोस्त थे वो धर्मेंद्र जी थे और प्रेम चोपड़ा साहब, ये तीनों एक ही कमरे में रहा करते थे। ये भी है देखो आप, मतलब जैसे होता है ना रूम शेयर करना, उस तरीके से ये निकले। बहुत स्ट्रगल किया लेकिन नाम इन्होंने बहुत बड़ा किया, लेकिन असल में मनोज कुमार नाम नहीं है, हरी कृष्ण गिरी गोस्वामी ये नाम है। 24 जुलाई साल 1937 की बात है, एबटाबाद में जब इनका जन्म हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में वो जगह, लेकिन 1937 की बात कर रहे हैं तब ये पूरा भारत ही था हमारा, तो उस वक्त इनका जन्म हुआ। लेकिन मनोज कुमार ने अपना नाम मनोज कैसे रखा, ये भी बात है। तो दिलीप कुमार साहब के ये एक फिल्म देखने गए थे, फिल्म का नाम था शबनम, उसको देखा तो मन में आया कि ये हीरो का नाम बड़ा अच्छा है, मनोज, क्या किरदार का नाम है।

तो बस प्रेरणा मिल गई और मनोज कुमार ने अपना नाम रख लिया, मतलब हरि कृष्ण ने नाम मनोज रख लिया। 1965 जब हुआ था वो भारत पाक युद्ध, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनसे कहा था कि जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाइए, इस नारे पर बनाइए, और वहीं से इन्होंने एक फिल्म बनाई थी उपकार, जिसने हमेशा के लिए इन्हें भारत कुमार बना दिया। और आज भी अगर देशभक्ति की फिल्मों की बात होती है तो सिर्फ इनका ही नाम आता है। अब इसमें एक गीत था, हालांकि इसका कोई गीत प्ले नहीं करूंगा अभी मैं, इस फिल्म में एक गीत था जिसके लिए संगीतकार से भिड़ गए थे, वो क्या था ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गीत इनकी फिल्मों के माध्यम से ज़िंदगी को समझाते हुए बताए हैं। शोर फिल्म का एक गीत बहुत ही मार्मिक सा लगता है और एक एक चीज़ बताता है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी कुछ और नहीं बस तेरी मेरी कहानी है।

बहुत ही प्यारा गीत है, एक प्यार का नगमा है। 10:28 और 38 सेकंड हो रहे, गीत मेरे मीत है। और यहाँ पर आज हम मनोज कुमार साहब के गीत लेकर रहे हैं और आप उनसे जुड़ी कुछ बातें भी बता रहे हैं फेसबुक पेज पर, जैसे कुछ आए उन्होंने। एक बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि फरमाइश मत कीजिए, बस आप ये बताइए कि कोई गीत आपको क्यों पसंद है, जो गीत आपकी लाइफ का मीत बन गया, और वो गीत मनोज कुमार साहब की फिल्म से है या उनसे जुड़ा कोई गीत है। तो बहुत से अलग अलग आ रहे हैं कमेंट्स, तो इनमें से एक बताता हूँ। ये अगेन पिछली बार भी हनी भाटिया आपका मैसेज था, बहुत बिल्कुल प्रॉम्प्ट रहते हैं। इन्होंने लिखा कि उपकार मूवी का दीवानों से ये मत पूछो, ये गाना जो है मेरे पापा मम्मी के लिए पापा मम्मी गाते थे, जब मम्मी रूठ जाती थी तब ये पापा सॉन्ग गाते थे, मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है, अक्सर सुनती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और संजय जी ने कहा, सादर नमस्कार, रोटी कपड़ा और मकान मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, ये गाना इनको पसंद है। बागपत उत्तर प्रदेश से इन्होंने मैसेज किया था, वाह। और एक सुशीला दत्ता लिखती है, पिछले घंटे वाली जो बात है वो ज़िंदगी से जुड़ी, कि ज़िंदगी क्या किसी मुफलिसी की खबा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लग जाते हैं। तरुण जी, मैं उस समय की हूँ जब अपने बारे में सोचा ही नहीं जाता था, अब तो आदत बदलने में बड़ी मुश्किल हो रही है, बस रग रग में बैठ गया है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ऐसे ही बहुत से लोगों ने तो कहा, सर एनी सॉन्ग प्ले फॉर मनोज कुमार। तो मनोज कुमार साहब के गाने तो हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन गीत मेरे मीत में हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि कोई गीत ऐसा जो आपको बहुत पसंद आता हो और आप उनके गीतों को सुनकर हमेशा गुनगुनाते हो, या कोई बात उस गीत से छिपी जैसे इन्होंने बताई हनी भाटिया ने। तो हम यहाँ पर बात करें अब उस गीत की जो कि मनोज कुमार साहब ने बिल्कुल कल्याण जी आनंद जी के सामने, उन्होंने कहा नहीं बॉस ये तो गाना जो है मैं चाहूँगा उस पर फिल्माया जाएगा। अब गाना था उपकार फिल्म का, 1967 में ये फिल्म आई थी और फिल्म में एक बहुत फेमस किरदार था मलंग चाचा, और गाना था कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मलंग चाचा का किरदार जो इस फिल्म में था, कल्याण जी आनंद जी को जब मालूम चला कि ये गाना हमने बना दिया पर ये गाना तो फिल्माया जाएगा इन पर, प्राण साहब पर, तो नहीं नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो अड़ गए जिद पे। तो मनोज कुमार साहब ने कहा ठीक है मैं गाना ही नहीं रखूँगा बॉस, लेकिन गाने में अगर कोई किरदार होगा तो यही होंगे बस। बोले नहीं नहीं साहब ये हमेशा नेगेटिव शेड करते हैं इन पर, ये ऐसा गाना बहुत ज़्यादा मतलब है इस गाने के अंदर, लाइफ के बहुत मतलब छिपे हैं, ये ऐसा गाना इनको तो नहीं मिलना चाहिए, ग्रे शेड निभाने वाले एक्टर पे नहीं जमेगा ये मनोज कुमार साहब। लेकिन दूर के यूँ कहें कि सोच वाले फिल्मकार थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो प्राण साहब ही करेंगे। और फिर उन्होंने जब प्राण साहब के साथ ये गाना शूट किया और ये गाना जब कल्याण जी आनंद जी ने देखा तो उनके आंखों से आंसू आ गए, बोले कि ये प्राण साहब हैं, ये लग ही नहीं रहे, ये प्राण साहब की एक्टिंग का कमाल। और प्राण साहब के लिए तो मनोज कुमार साहब ने कहा कि मैं लिखता ही कैरेक्टर इनके लिए ख़ास हूँ। ये इन्होंने बहुत से कैरेक्टर लिखे हैं, एक फिल्म और थी जिसमें इन्होंने डाकू का किरदार लिखा था इनके लिए, बोले आप नहीं करोगे तो मैं फिल्म ही नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे बातें करते थे। यानी मनोज कुमार साहब के दिमाग में स्क्रिप्ट लिखते समय ही ध्यान रहता था कि इस किरदार को कौन बेहतर निभा सकता है। चलिए अब आगे एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में वही गीत प्ले करेंगे जो कि प्राण साहब पर फिल्माया गया था।

0: एक नई खुशी।
1: JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पतझर सावन बसंत बहार,
2: मौसम आते मौसम जाते, कभी खुशी कभी गम है लाते, पर कौन है जिसे आप हमेशा अपने पास है पाते। आपका अपना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

श्रोतागण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 100.3 पर एक गाना पहुंच चुका है और दूसरा चलने के लिए तैयार है। सुनते रहिए सॉन्ग पे सॉन्ग ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी।

10 बजकर 44 मिनट 18 सेकंड हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है, प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये भारत को बयान करता है, इतना प्यारा सा गीत है। बहुत जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मतलब देखिए कितनी बारीकी से पूरी दुनिया को समझाया कि हम क्या हैं। ये मनोज कुमार साहब ने अपनी फिल्मों में जिस तरीके से बताना चाहा, जिस तरीके से प्रेरित मतलब बता दिया, वो आज भी कोई कोशिश करता है तो नहीं बात बन पाती, क्योंकि उन्होंने जो किया वो बहुत ही अलग। जैसे उस इसी फिल्म में एक गीत था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो ये गीत जो है जो मीत हमेशा के लिए देशभक्ति का बन गया। हमेशा जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी ये गीत तो प्ले होगा ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हर भारतीय की भावना है, हर भारतीय का मीत बन चुका। जब ये गीत बजता है ना तो खेतों की हरियाली दिखने लगती है अपने आप, जवानों का साहस जो फील आने लग जाता है, और भारत की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाती है। ये सब कुछ महसूस होता है सिर्फ इस गीत के कारण, क्योंकि गीतकार ने लिखा, म्यूज़िक बनाया, सब कुछ हुआ, गाना गाया, लेकिन इसके पीछे थॉट जो है, इसके पीछे जो इस कर गुजरने की चाहत, वो मनोज कुमार साहब की। तो अब सुनते हैं मनोज कुमार साहब की एक और यादगार फिल्म का गीत, और इस बार कौन सा गीत सुने, इस बार सुन लेते हैं सन्यासी का। अच्छा, आप इंतज़ार कर रहे थे, ओके, तरुण सन्यासी वाला गीत तो प्ले किया ही नहीं, ठीक है, सन्यासी वाला प्ले भी करेंगे। अच्छा, आपको कौन कौन से गाने इनके पसंद है, ये तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। कुछ लोग आए तो सिर्फ फरमाइशी गीत बता रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे गीत हैं, चल सन्यासी मंदिर में, और बहुत सारे जैसा मेरा रूप, ऐसे बहुत से गीत हैं। तो चलिए सुन, बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्याकुमारी, ऐसे कई गीत हैं। ओके, तो चलिए यही प्ले करते हैं, चल सन्यासी मंदिर में।

0: दादा जी की आवाज़, साथ में मुकेश की आवाज़। सुना हमने ये गीत बड़ा प्यारा सा, मनोज कुमार साहब पर। और ये मनोज कुमार साहब की जो फिल्में हैं जिनमें हम कहते हैं ना कि बस नाम लिया भारत कुमार का नाम याद आता है, पहले याद आती है उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी आस्था और आध्यात्मिक वाली फिल्में भी काफ़ी चर्चित रही। इनकी आस्था रही शिरडी के साईं बाबा में बहुत ज़्यादा गहरी, इसीलिए इन्होंने साल 1977 में एक फिल्म बनाई थी शिरडी के साईं बाबा। तो उसमें अभिनय भी किया, उसकी पटकथा भी लिखी और फिल्म के जो नरेटर भी थे वो खुद ही रहे। और इस फिल्म का जो किरदार था ना, जो साईं बाबा वाला, वो सुधीर दलवी ने निभाया था। तो यही वजह है कि मनोज कुमार साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो आध्यात्मिक और देशभक्ति के विषयों से जुड़े एक संवेदनशील कलाकार रहे हैं और उनको हमेशा से भारतीय सिनेमा ऐसे याद करेगा। जब से उन्होंने वो फिल्म बनाई उसके बाद लोगों को पता चला था कि क्या साईं बाबा हैं और कौन हैं, कहाँ हैं। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने उजागर की, बताया। तो चलिए अब एक गीत इसी फिल्म से होगा और अब उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक भी होगा और फिर उसके बाद में हम रह गुजर की तरफ चलेंगे। सुनते रहिए 100.3 FM।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख
2: दीजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो को से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
8: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
7: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
8: सच?
7: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
8: समझ गया।

ऑसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज। गाने के बोल कितने खूबसूरत हैं कि दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, फिर से ढूंढ रहा है। तो आज जो मैंने कहा था ना सुबह कि भाई आज तो सेल्फ केयर डे है, तो गुलजार साहब ने जैसे इस गाने के माध्यम से लिख दिया कि वक्त को नहीं एहसासों को समझना चाहिए। मतलब उन्होंने लिखा ही कुछ ऐसा कि वक्त क्या है, एहसास बहुत ज़रूरी है। तो आज की सबसे बड़ी कमी क्या है, देखिए रह गुज़र चल रहा है तो ज़िंदगी की बात हो रही है, रह गुज़र अब कहाँ से गुज़र गुज़र के ज़िंदगी हम बसर करते हैं ये तो हम ही जाने। तो देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है लाइफ में, अगर मैं पूछूं आपसे सबसे बड़ी कमी क्या है, पैसे की, फुर्सत की? अब आपके पास में इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहेगा, है ना? हम सब के पास घड़ी तो है देखो, लेकिन क्या है, वक्त नहीं है। मोबाइल है लेकिन बातें नहीं है, आजकल उतना बातें भी नहीं हो पाती। वो खुद दूसरे से बात करने के बजाय खुद ही रील्स और इंस्टाग्राम में उलझे पड़े हैं और अलग अलग शॉर्ट्स देख रहे हैं। वक्त का पता नहीं चलता और वक्त यूं ही गुजर जाता है, कोई एहसास भी नहीं होते, मालूम नहीं चलता कि पहली रील कौन सी देखी थी और अब एक घंटा हो गया ये हमें पता भी नहीं चला। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग पर कैसे असर करती हैं। तो फुर्सत की बात जब होती है ना, तो फुर्सत में हम क्या करते हैं देखने वाली बात है। लेकिन एक बात है कि मोबाइल है, बात नहीं है, समझिए, पर दोस्त है लेकिन मुलाकात नहीं है, ये बात भी है। तो आज ये देखिए कि हमने लास्ट टाइम दोस्तों से कैसे मुलाकात की थी। फ़ोन पे तो चलो आजकल वो इमोजी वाला सिस्टम और हो गया कि ठीक है हम हंस रहे हैं तो हंसने का भेज दिया, थोड़ा सैड लगा तो सैड का भेज दिया, नमस्ते वाला साइन भेज दिया, बस इन्हीं में ज़िंदगी अटक के रह गई। रियल में जाकर कब नमस्ते किए, कब मिले, कब गले मिले, कब बातें हुई, ये जो है वो मुलाकातों वाली बातें नहीं हो गई। ये होना ज़रूरी है, इसीलिए तो कहते हैं कि फुर्सत मिले तो कभी खुद से भी मिल लिया करो, फुर्सत मिले जो कभी तो खुद से भी मिल लिया करो, हर रोज आईने में दिखने वाला चेहरा तुम नहीं होते। सही कहा ना?

हर फिक्र को उस धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन यहाँ ये वो धुआं नहीं होना चाहिए जो कि नशे वाला है, लेकिन यहाँ ये बात होनी चाहिए कि किसी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो इस तरीके से कोई परेशानी है ना दें, वह आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। लाइफ यही सिखाती है, इस गीत के माध्यम से यही बात निकल कर आती है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, ये वाली बात है। तो आज रह गुज़र में हम मंजिल की नहीं, हम सफ़र की बात करेंगे, वो सफ़र जो कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, रोज़ाना डेली का सफ़र है, सुबह ऑफिस के लिए निकलना, शाम को फिर से लौटना, वही सफ़र, वही रिपीटेशन, कहीं बीच में कहीं भी साल में कभी एक बार मौका मिला तो बाहर घुमाए, या फिर कोई शादी में चले गए, या कुछ भी, मतलब सेम जैसे मोहन राकेश के उपन्यासों में, नाटकों में कहा गया कि ज़िंदगी एक जैसी सी लगने लगती है, कहीं मोनोटोनी होने लग जाती है। लेकिन ज़िंदगी में हमें अपने आप से बात करने का वक्त मिले तो ज़िंदगी समझ में भी आवे कि भाई हाँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं ये बात आज इस पर ही फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ कि ज़िंदगी को समझने की हम कोशिश करते हैं, पर ज़िंदगी को जीना, ज़िंदगी जीने की कला जो है ना, वो जो समझ ले, उसके लिए फिर पहेली ज़्यादा गहरी पहेली नहीं रहती। वैसे ज़िंदगी ऑलवेज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी हो जाता है, लेकिन लाइफ में अपने आप के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: कभी तो हंसाए।
1: बिल्कुल सही, जिंदगी कैसी पहेली है, कभी हंसाए कभी रुलाए। रेगुजर में आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई जिंदगी जवाब कम है पर सवाल ज़्यादा देती है ना, बहुत सारे सवाल छोड़ देती है। अब बोलो, बोलती है चलो ठीक है अब ये करके दिखाओ। लेकिन शायद इसी का नाम जिंदगी है ना। अगर जिंदगी में कुछ सवाल जिंदगी नहीं देगी तो फिर जिंदगी जिंदगी कैसे रहेगी। संघर्ष बहुत ज़रूरी है, सोना तपकर कुंदन बनता है, वो वाली बात है। तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत शेर है कि खुद से मिलने का एक दिन तय कर लिया करो, खुद से मिलने का एक दिन तय कर लिया करो, लोगों से मिलते मिलते इंसान खुद से बिछड़ जाता है। क्या बात है।

किशोरदा की आवाज़, गोलमाल का गाना हमने सुन लिया, 11:25 और 49 सेकंड। इस गाने में एक बात छिपी है कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता लो। तो इस गाने से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत क्या है। सबसे कीमती दौलत है पल, समय, वक्त, टाइम। जो चला गया ना एक बार टाइम, तो फिर लौट के नहीं आता है। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में कि मैनेज योर टाइम बिफोर टाइम मैनेजेज यू। आप वक्त के साथ चलते रहिए तो ठीक है, वरना एक दिन मतलब आप वक्त को अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर अगर आप वैसे नहीं चल पाते तो फिर वक्त के हिसाब से आपको बनना पड़ता है। इसलिए आज किसी भी अपने को मैं कह रहा हूँ, एक फ़ोन ज़रूर कीजिएगा या पर सीधे जाके मिल लीजिएगा। मतलब आजकल ये भी देखते हैं कि अरे भाई पेट्रोल इतना चल जाएगा, बहुत पहले कभी सोचते थे इतनी दूर, अरे जगतपुरा जाना है, कैसे जाएंगे यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। नहीं, चले जाइए, समय निकालिए और फिर उसके बाद में देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। मतलब लाइफ एक्चुअली क्या है, कुछ डिजिटल ज़िंदगी में खो सी गई है। उस चक्कर में जो हम रियली थे वो हम वो नहीं पा रहे। वैसे वक्त की बात चलिए तो एक ही बात कहेंगे कि वक्त से पहले नहीं मिलता कुछ भी यहाँ।

वक्त से पहले नहीं मिलता कुछ भी यहां, मगर वक्त निकल जाए, तो बहुत कुछ छूट जाता है। इसलिए रुकना नहीं है, चलते रहना है वक्त के साथ।

0: सिगरेट तंबाकू जर्दा स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, फिर क्यों हम इनके नजदीक चले जाते हैं? दिल ही लगाना है तो गीत संगीत का जादू है ना?
1: कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है।
0: इंफोटेनमेंट का डोज 100.3 FM पर मिलेगा ना, तन और मन दोनों रहेंगे स्वस्थ जब आप बनेंगे रेडियो पिंक सिटी के दोस्त।
1: यारो दोस्ती बड़ी ही
0: है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

गाइड फिल्म का गीत हमने सुन लिया लता जी की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गीत। और इससे पहले हमने सुना कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के इम्तिहान से। तो ज़िंदगी में यूं ही ये जो दोनों ही गीत है वो क्या बताते हैं कि आगे बढ़ते रहना है, ज़िंदगी जीने के लिए तमन्ना रखनी चाहिए कि भाई कर गुजरना है कुछ। और इस गाने के साथ में भी यही हुआ था, दीवार पर चल रही थी तो वो चित्तौड़ में जब शूट हो रही थी तब ये कह रही थी कि एक्ट्रेस, इन्होंने यही कहा था वहीदा रहमान ने कि मुझे ऐसा लग रहा था वास्तव में आज ज़िंदगी जीने की तमन्ना मरने का इरादा, वो दीवार पे चलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहरहाल अपने काम को बहुत ही सजगता से करना चाहिए, कोई भी काम हो, लेकिन ज़िंदगी में थकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं है कि थक कर बैठ गए, अरे नहीं मेरे से नहीं हो रहा, कि मुसलसल कोशिशों से ही तकदीरें संवरती है, थक कर बैठ जाने से मंजिलें नहीं मिलती, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और हार मान लेना, मैं तो ये कभी भी नहीं कहता कोई हार मान ले, हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, क्योंकि जग अभी तक जीता नहीं है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, इस थॉट को लेकर चलना चाहिए। तो हौसलों की उड़ान अभी भी बाकी है, ज़िंदगी की पहचान अभी भी बाकी है, अपने आप को पहचानिए, लाइफ में अपने लिए वक्त निकालिए और चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। 11:36

100.3 पर 11:43 और 29 सेकंड हुए हैं। मैं उतरुण, आप सुन रहे हैं रह गुज़र और हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी में चलने की, क्योंकि आज सेल्फ़ केयर डे है और इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम अपने आप से क्या मिल पाते हैं। कभी अपने आप को थैंक यू बोला है आपने? अगर नहीं बोला है तो आज बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि आप अपने लिए क्या कुछ नहीं कर पाते ये आप खुद को नहीं पता कर पाते। कारण ये कि हम दुनिया के लिए जीते हैं पर अपन को पता ही नहीं होता कि मैंने अपने लिए 30 मिनट निकाले कि नहीं निकाले। तो लाइफ में आज ये सोचिए और एक बार 30 मिनट निकालिए आज मेरे कहने पर, कुछ भी मन का कीजिए मोबाइल को साइड में रख के, फिर उसके बाद में आप थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। और ये थैंक यू आप रेडियो पिंक सिटी के फेसबुक पेज पर आकर भी कीजिएगा, बताइएगा कि रेडियो ने आज आपको जो बताया उसके लिए आप क्या सोचते हैं। अभी तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी।

0: दे लाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
4: अरे मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो।
5: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
4: अरे मोहन भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
5: सच?
4: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
5: समझ गया।

जिंदगी कभी धूप है तो कभी छांव है ना, यही जीवन है। अब दोनों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, धूप है तो छांव भी है। और ये कहते हैं ना कि धूप आए तो छांव की कदर होती है, धूप आए तो छांव की कदर होती है, और जब मुश्किलें आती है ना तब अपनों की खबर होती है, अपनों अपने याद आने लगते हैं, है ना। तो ये बात ख्याल रखनी कि अपने अपनों का बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ मिल गया तो हम दूसरों को भूल गए, ये भी तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज जो ज़िंदगी मुश्किल लगती है ना, कई जगह ऐसे बोलते हैं नहीं यार लाइफ बहुत ज़्यादा हेल हो रखी है, नहीं, आज अगर मुश्किल लग रही है तो शायद कल आपके लिए ये जो हो रहा है यही बड़ी सीख बन जाए। मतलब ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से दोस्ती कर लेते हैं। रास्ते बड़े प्यार से कट जाएं तो बस हो जाए, तो ज़िंदगी का सफ़र जो है ना बड़ा सुहाना है। यहाँ पर कल क्या हो किसने जाना है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी का सफ़र बड़ा सुहाना है। लाइफ में अपने लिए वक्त निकालिए, अपने अपनों के लिए वक्त निकालिए, थोड़ा सा चेंज करके देखिए, सेल्फ केयर कीजिए, तब देखिए ज़िंदगी कहेगी वास्तव में अरे तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि कुछ ना एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा, तो वो आज ही हो सकता है। धन्यवाद कहिए अपने आप को एंड स्टार्ट 30 मिनट वाला डेली का रूल, फिर देखिए ज़िंदगी सफल सुहानी।

इसी गीत के सारे छोड़े जाता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा लाइफ को एंजॉय करिए, जिंदगी इसी का नाम है। बाय बाय।

आपने सुना FM रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम, ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में यादों की महफिल।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज दोनों सदनों में शुरुआत में करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी सभापति सीपी राधा कृष्णन ने शून्यकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और इस मामले पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और अगले 4 दिन तक कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए रेड अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच अलवर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और सीकर सहित अनेक जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। उधर उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से डूंगरपुर में सोम और माही नदियां उफान पर है तथा कई स्थानों पर जलभराव और पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। भरतपुर की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने मॉनसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में सिविल लाइन, नालों और ड्रेनों की नियमित सफाई करने तथा जलभराव नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था मजबूत करने, रपटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक कराने को कहा। संभागीय आयुक्त ने अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जल भराव रोकने और आपदा की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में चल रहे अंगदान जागरूकता अभियान को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आमजन की बढ़ती भागीदारी से राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रदेश में 1,08,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। अंगदान जागरूकता अभियान 3 अगस्त तक चलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेशवासियों से ज्यादा संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई गंभीर रोगियों को नया जीवन मिल सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया था जो उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था और जिसे मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया। मंत्रालय ने कहा कि कुशा मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों और बड़े दुश्मन विमानों सहित विभिन्न तरह के हवाई खतरों को एक विस्तृत दूरी और ऊंचाई के दायरे में निष्क्रिय करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए DRDO और सभी संबंधित पक्षों को बधाई दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुरीला सफर का रिक्राम।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला

वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो, तो मज़ा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है, और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहाँ की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखती है कि नीले से याद आया राजेश खन्ना, फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने बिल्कुल पूरी फहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे। 11 गानों और शब्दों की फहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजादे इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं, सुरीला सफर में नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा, और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज़्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेम नगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समुंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था, प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूँ, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हैं जिन्हें ब्लैक एंड वाइट पसंद हैं और उनका कहना है कि ब्लैक एंड वाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता हैं काला रंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और श्रोता हैं जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता हैं जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता हैं जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया था, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं। रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है? जैसे भोपाल के लोग भदभदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफ़ी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना ये है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है, समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गांव चले जाते हैं, जहां घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र कहा है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। माँ नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नज़ारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती हैं कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुली, आरे वारे जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूँ तो ब्लू पैंट, वाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूँ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

ये गाना कहता है वादियों में खो जाएं हम तुम। ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत ज़रूर सुनवाइएगा। तो भाई इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा तो उत्तम कुमार जी के गाने ज़रूर होंगे। और ये यकीन रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की वादी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि ये आरती मुखर्जी की आवाज़ है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है, आरंभ नाम की ये फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूँ, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही हैं कि ज़िंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं ये बचकानी सिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन आना सागर झील है, और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मिनाल का झरना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफ़र करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मज़ा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए। और जैसे इसी भारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना। विविध भारती, ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी के बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ जैसे खिड़की खोलते हैं, एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज़्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियाँ तो हैं, पहाड़ और वादियाँ दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियाँ भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की

की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का मजा अलग होता है और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहाँ बिताना पसंद है ये बताइएगा।

0: सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भाग दौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद हैं क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे।
0: आसमां के नीचे।

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं वहाँ जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस चुप सी

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता हैं जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतज़ार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
2: या

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।

0: एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
2: ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नजर जरूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: हम विविध भारती से बोल रही हैं, वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्व मिमां धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था, भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहाँ के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी हो मेरा इंतजार।
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
3: ये शाम मस्तानी।
2: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
3: दिल इंसान का एक तरह।
2: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
5: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं

0: से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट UG पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और AI से बनाई गई है।

ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
1: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वावथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412।

0: अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंडीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।
1: प्यार बन गई

छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना हजरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत शंकर जयकिशन का था। इंदीवर के बोल श्यामल मित्रा का संगीत फिल्म

0: किया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

आपने सुना सदाबहार नगमे कार्यक्रम, ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। हेलो सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, खुशियाँ ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर ज़रूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर ज़रा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियाँ हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी ज़रा नज़र घुमाइए बच्चों की तोतली बोली में, कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मनपसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्ही नन्ही सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतज़ार किस बात का है, इन नन्ही खुशियों पर नज़र रखिए, हमें फ़ोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्ही खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियाँ हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय, जिन्होंने इंदौर
1: जी
0: से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं, क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा मीक्षा लिख लेती हूँ,
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी उसकी मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा है तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?

0: हाँ होते हैं ना, होते हैं ना चंचल जी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और
0: जी
1: ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
0: लेखन की प्रेरणा हमें मिली कुछ बातें कुछ गीत से। जब वो
1: अच्छा
0: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
1: ये
0: तो
1: बड़ी
0: ऐसे
1: अच्छी
0: करके
1: बात
0: हिचक खुलती गई थी।
1: सृष्टि, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली।
0: जी
1: तो
0: रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
1: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है, ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: और कोई शौक आपके?
0: बिल्कुल। बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं।
1: ये बिल्कुल सही बात है।
0: किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक है।
1: अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है,
0: जी जी जी जी जी जी
1: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे,
0: तब
1: तो
0: तक लिख नहीं सकते आप, तब तक लिख नहीं
1: बिल्कुल सही
0: सकते।
1: बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें
0: जी
1: अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
0: जी जी जी
1: सृष्टि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं
0: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
1: जी। आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी। दीदी,
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे।
1: जिला सागर मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी, कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में? यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है। दीदी दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन,
0: जी
1: 5वीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी।
1: जी दीदी
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वही हम उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में। दीदी
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है। जी
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: दीदी
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती की आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी

के बिना फूला है जहां, कौन भला दुनिया में माँ

0: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियाँ बांटता है।
1: दीदी
0: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज
1: जी,
0: आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
1: मूवी का नाम है रंग
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
0: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
1: जी
0: इसमें क्या मेरी खता है।
1: जी
0: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाएं तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
0: अच्छा,
1: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चले जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत
1: इतनी
0: बहुत
1: भैया,
0: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली.
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव,
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं.
1: जी हाँ जी हाँ,
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं. और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के.

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा गोयल बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के
1: सुनना
0: लिए आप क्या
1: आपका,
0: करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करते हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही।
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना
0: हाँ
1: जूही
0: जी,
1: का,
0: जूही का फूल
1: वो
0: बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए हुए थे। उस जमाने में एमए बीएड करे हुए लोग थे,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाएं तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ भी काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, मतलब लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेते हो, वही सीखा है। मैं कहती हूँ उनको कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
0: तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
0: तो
1: वो गाना
0: बताइए
1: है
0: आपकी पसंद कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: महल फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने
1: हाँ
0: बारे
1: जी
0: में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस
1: हाँ,
0: तरह गुजरता है?
1: घर के काम करके थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते
0: काम
1: हैं।
0: हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना। हाँ
0: खाना बनाना ऐसा चीज़ है जो आपको खुशी देता है?
1: जी मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना ज़रूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज़्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम, मन
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गाल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। हम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम, सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियाँ ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीज़ों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, तो आपको अपने
1: जी
0: रसोई घर में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है।
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के। सूजी
0: टुकड़े? किस चीज़ के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भूनकर।
0: सूजी के टुकड़े बनाती हैं।
1: जी मैम। और मैम, आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं।
1: जी, आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बनी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाज़ार में जो
1: जी मैम,
0: मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं
1: जी मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा
1: जी मैम,
0: करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का, और
0: किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मेरा।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप
1: हाँ
0: को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं।
1: हाँ
0: आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती, वो स्टोरी और कोई कथा वैथा होती है।
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं। और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: मैडम सखी सहेली,
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा,
0: सबसे ज्यादा? और उसके बाद
1: हाँ
0: में और कौन से
1: वैसे
0: कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले, उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है, इसीलिए
0: आपके परिवार में और कौन कौन हैं?
1: हम दोनों ही हैं।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ हम दोनों
0: तो आज आप,
1: ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा आप दोनों ब्लाइंड हैं, आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ और वो नहीं वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंदा
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी,
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग-अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी,
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहाँ काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल। और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैम, किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ चल दिया बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी बस कुछ ही पलों के बाद।
1: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।
0: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

यह गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरे खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही हैं ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है,

गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपये बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

0: सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझा कर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आप सुन रहे हैं पिटारा।

0: इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।
1: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3,00,000 से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा? क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगे आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर? भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं? आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी

जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहां पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उससे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज़ टिफ़िन लेकर आऊँगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार हैं। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ़ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज़ टिफ़िन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता। वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

तो एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

पेशी खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बारिशों का ये भीगता मौसम जाने कितनी ही कसक दिल में जगाता है। रात भीगती है तो भीगते हैं ये रेशमी नजारे, बूंदों में झिलमिलाता वो उनका हुस्न शबाब। अजब हुस्न की कारीगरी है ये उनका शबाब, बंद कलियों में हो जैसे फूलों का इंतखाब।

बस इतना भी न आइये कि सितारे देखते हैं, ये मोती सी चमक, ये पायल की खनक, क्या सोचकर ये रात आई है, ये हुस्न की कारीगरी, ये आंखों की जादूगरी, मोहब्बत के तिलस्म में गिरफ्तार, काश ये सारा जहां होता, कुछ होता न होता, प्यार में ये मुमकिन होता।

दिल धड़कता है, दो घड़ी तो बैठ जाइए, न जाइए दूर कि जी घबराता है। दिल अपना था आपसे लगा बैठे, राज दिल आपसे सुना बैठे। कुछ आपने भी छुपाया है, कहिए न कहिए, कलियों के दिल को धड़काया है आपने, कहिए कि न कहिए। जाने बातों से बहलाते क्यों हैं, सच कहते नहीं कि हाँ हमने भी मोहब्बत की है, रात हमने भी तन्हाइयों में बसर की है।

शोलों से न खेलिए, ये नाजुकी की बात नहीं, जो इसको छेड़ा तो बारहा मचल जाएगी। पास आइए न फेरिए ये नजरें करम, दिल आपका है यकीन मानिए कि न मानिए। न देखो इधर ऐ शब के तारों, जरा छुप जाओ, चिराग़े हुस्न से आ रही है रोशनी थम।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। बादलों से बरसते बूंदों के मोती जा अटके हैं उनकी जुल्फों में, भीगते शानों पे कभी ढलते कभी आंचल में सिमट जाते हैं। ये बूंदों की खुशनसीबी कुछ ठहरी कुछ ढल गई, कुछ टूट कर लबों को भिगो गई। संदली रात में बारिशों का रंग चढ़ता गया, लम्हा लम्हा उनके रुखसार का रंग गुलाबी होता गया।

काश ये रात थम जाए, बादलों से बूंदों का आशियां लरस जाए, इश्क हुस्न के दरमियां न रहे आज कोई फासला, पर्वतों से टूट के देखो काली घटा बरसती है, न पूछिए हमसे कि बारिशों से भी आग बरसती है।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ, फिल्म का नाम है सन्यासी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम पत्थर के सनम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

फिल्म शहीद का गीत अभी आपने सुना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन। रवि के संगीत निर्देशन में हम आपको साहिर लुधियानवी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है अमानत।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अमानत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रफी ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: वर्मा मलिक का लिखा गीत सुनिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

0: तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचारों के बाद संध्या 6:05 पर। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
3: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी

0: पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
2: मांग से तीन, उनमें से दो सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
3: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने का शेष भाग सुनिए।

0: मुकेश की आवाज में अभी आपने फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत सुना। गीतकार इंदिवर थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म शोर का गाना, आवाजें मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की। गीत को राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई।

0: है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया के रंगून पिया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
3: और अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम अमानुष, गीत रचना इंदिवर की और संगीत श्यामल मित्रा का।

किशोर कुमार की आवाज थी फिल्म अमानुष के लिए। कार्यक्रम का अगला गीत दिलीप सेन और समीर सेन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ, युगल स्वर लता मंगेशकर और कुमार सानू के, फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

लता मंगेशकर और कुमार सानू को आपने सुना। फिल्म का नाम था ये दिल लगी। और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। जतिन ललित की धुन, समीर की गीत रचना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम वास्तव।

0: श्रोताओं, इसी के साथ प्रोग्राम तराने नए पुराने यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही देर में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और उसके बाद 6:45 पर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद ये वार्ता हुई। सरकार की ओर से सीजेपी की 2 शर्तों को स्वीकार करने के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी।

0: जेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष राका ने श्री नड्डा को अपनी मांगे बताई। इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और हाल ही में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर आज एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में सुधारों को संस्थागत रूप से देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि देश भी यही चाहता है और विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस मुद्दे पर संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे देश के युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी, राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। संसद के दोनों सदनों में आज पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहा। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को लेकर तथा अन्य विषयों पर विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोनों सदनों के कामकाज पर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सत्र के पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, किंतु विपक्ष बिना किसी ठोस शर्त के चर्चा में भाग नहीं ले रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम बिल पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 1264 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक के अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा 2026-2027 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके तहत 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संचय और जल भागीदारी पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाचारों से राजस्थान जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक जल प्रबंधन और हर घर जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, ऐतिहासिक यमुना जल समझौते और नर्मदा अवार्ड समझौते ने प्रदेश में जल सुरक्षा के नए युग की शुरुआत की है।
2: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधान

0: मंत्री जी के नेतृत्व में, और अभी हमारा यमुनाओं का MOA भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी DPR भी बन गई, अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नशा मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में नशा मुक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और भावी कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को इसके लिए जल्द परिपत्र जारी करने और नशा मुक्ति के लिए राज्य में महीने भर का विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाए। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीमा क्षेत्र में ड्रोन से नशीले पदार्थों को भेजे जाने पर चिंता जताते हुए इस संबंध में जल्द प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली पहुंचे। उन्होंने राजकीय BDM अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। चिकित्सा मंत्री ने विभिन्न वार्डों का भी परीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए।
2: मेरा दो चीजों का फोकस है। नंबर एक, चाहे सब सेंटर है, चाहे PHC है, CHC है, SPH है, DHH है, मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
1: बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC परिवारों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर सर्वे का काम पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 जुलाई से शुरू हुआ सर्वे का काम 23 जुलाई तक करीब 70% ही पूरा हो पाया है। इसे देखते हुए सर्वे की अवधि को बढ़ाया गया है। इस बीच भीलवाड़ा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर निकाय चुनावों से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है।
3: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनर्सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके हैं। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता।
1: राज्य के पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट बताया है। साथ ही कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में मध्यम से तेज पानी बरसा। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही बरसात का दौर बना हुआ है। माही डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। भीलवाड़ा में भी रिमझिम बारिश हो रही है। पाली जिले के सादड़ी, देसूरी और नानबेड़ा सहित कई जगह पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला रुक रुक कर बना हुआ है। जवाई बांध सहित विभिन्न स्रोतों में पानी की आवक लगातार जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल सभी जिलों में येलो और जालौर तथा सिरोही में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में खासकर राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। अभी भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में अगले दो तीन दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं राज्य के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी दिन चार दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित की गई। बोर्ड की ओर से महिला और बाल विकास विभाग में 72 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई। सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक पारी में ये परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले दो दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसकी लेखिका है नीलिमा दादिज। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे अजमेर जिले में पिछले महीने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनसेवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त मिली, विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं जुड़ी और विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए जानते हैं पिछले महीने की प्रमुख गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इसके तहत अजमेर जिले के लगभग 1,65,000 किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंची। इस अवसर पर तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिले के सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम हुए, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों केकड़ी के दौरे पर रहे। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आम जन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली राज्यमार्ग के 4-लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का पिछले दिनों शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भूमि पूजन किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकसित किया जाएगा। परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, खेल मैदान, परेड ग्राउंड और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुष्कर क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने काठोदा और पालड़ी गांवों में 2,28,00,000 रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें दोनों गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र और काठोदा की संपर्क सड़क शामिल है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और आवागमन की सुविधा को मजबूती मिलेगी। राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से जिले के मरीजों को आधुनिक सर्जरी की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाला। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में डॉ. आनंद और डॉ. दीपक कुमार ने नए सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर रैंकिंग में देश के शीर्ष संस्थानों में 79वां स्थान मिला है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में विश्वविद्यालय ने 67वीं रैंक हासिल की है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। शिविरों में पट्टे, नामांतरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन मैदान में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयुर्विज्ञान की मानकीकृत सिंधी शब्दावली तैयार करने के लिए 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से चिकित्सा विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लगभग 6,000 अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला माथे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिल्या, संसद में आई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में 3 केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशारी लत न जड़ों खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। अर प्रदेश रा उगनी अर लंकाऊ हल्का माए आवता 2 दिन कठे कठे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल प्रदेश रा सगला जिला माय बरसात सारू चेतायो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत भाजपा रा कई नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी CJP रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली माय दूजा दौर री मीटिंग हुई। न्यारी न्यारी परीक्षावां माए कथित गड़बड़ियां रे खिलाफ नौजवानों री अगुवाई माए करिया जा रहा विरोध प्रदर्शना बीच आ बातचीत करी ची। CJP रा नुमाइंदा सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और दीपक बलियान शांति सागे प्रदर्शन करण वाला रे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करण और हाल ही माए भी परीक्षावां माए गड़बड़ियां रो नुकसान झेल रहा विद्यार्थियों रा परिवारों ने मुआवजो देवन री शर्तां सरकार कानून मान्या पाछे बातचीत री सहमति जताई। खबर नवी संसागे बातचीत करता था का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहो कि सरकार काल प्रतिनिधि मंडल सागे एक और दौर री चर्चा करेला। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG पेपर लीक मामला पाछे सुधार लागू करण रा काम जुड़ियो हलफनामो दाखिल करण रा हुकम दीना है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ ई मामला री सुनवाई करता थका कहो कि हलफनामा माए सुधारा ने संस्थागत रूप देवन सारू करी जा जतन री साफ जानकारी देवनी चाहिए। पीठ कहो के वा ई मामला माए कड़ी निगरानी राखता थका लगातार इनरो जायजो लेवेला। ई मामला माए आगली सुनवाई 27 जुलाई ने वेला। ई बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षावां माय गैर वाजिब साधन काम लेवण रोकण सारू करड़ो बिल लावण माय कोई मोड़ो नी करण माथे जोर दीनो है। संसद परिसर माय खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू कहो कि देश री आई मर्जी है और ओ बिल पास वेवण माय कोई अड़चन नी आवणी चाहिए। वह कहो कि सरकार विद्यार्थियों रो भविष्य सुरक्षित राखण सारू कई खास जतन कर रही है। रिजिजू कहो कि गर विपक्ष ई मुद्दा माथे संसदीय कार्रवाई माए अड़चन पैदा करेला तो वन देश रा नौजवाना री रीस रो सामो करनु पड़ेला।
7: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए।

0: छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेपर लीक उंजुड़िया मामला की सुनवाई सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावण रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फैसला री सराहना कीनी है। खबर नवीसां सागे बातचीत करता था कां वे कहो के अदालतां माए मामला की सुनवाई रोजीना फैला। संसद रा दोन्यो सदना माए आज लगातार पांचवा दिन हंगामो भयो। नीट पेपर लीक मामला अर दूजा मुद्दा माथा चर्चा री मांग न लेर विपक्ष रा सदस्यां रा शोर शराबा बीच लोकसभा अर राज्यसभा री कार्रवाई बार बार टालनी पड़ी। ई पाछे दोन्यो सदना री कार्रवाई सोमवार ताई टाल दी रीजी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुए ताई संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार सत्र रा पहला दिन हुई नीट पेपर लीक मामला माथा चर्चा शुरू तैयार ही, पण विपक्ष बिना ठोस शर्त चर्चा में शामिल नहीं भे रो है। राज्यसभा में विपक्ष रा शोर शराबा बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वंदे मातरम बिल पेश कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला नी समिति री मीटिंग हुई। इनमाए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रा तहत रेल नेटवर्क बधावण सारू 1,264 करोड़ रुपया री मल्टी ट्रेकिंग परियोजना ने मंजूरी दी रीजी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने मीटिंग माए करीजिया खास खास फैसला नी जानकारी दीनी। वे बतायो कि मंत्रिमंडल देश माए 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनावण सारू भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। ई योजना रो ऐलान चालू माली साल रा केंद्रीय बजट में करीचियो हो। इन तहत 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क बनाया जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पानी भेड़ो करण माथे जोर दीनो है। वे आज जयपुर में राखी जिया राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में बोल रहा हा। शर्मा कहो कि नुआ नुआ काम कह रहा राजस्थान पानी रा प्रबंधन रा हल्का माय राष्ट्रीय मॉडल बनेला। वह कहो कि पानी रा बेहतर प्रबंधन और हर घर ताई पानी पुगावण माथे सरकार रो खास ध्यान है। मुख्यमंत्री कहो कि राम जल सेतु लिंक परियोजना ऐतिहासिक यमुना जल समझौता और नर्मदा अवार्ड समझौताओं राज्य में पानी री उपलब्धता तय करण रा नुआ दौर री शुरुआत हुई है।
2: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुनाओं का एमओए भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी डीपीआर भी बन गई, अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
1: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में नशारी लत न जड़ू खत्म करण सारू खास अभियान चलायो चावेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशा मुक्ति अभियान ने असरदार तरीकाओं लागू करण और ई सारू कार्य योजना रो जायजो लेवण बाबत आज जयपुर में राखी जी मीटिंग में महीना भर रो खास अभियान चलावण बाबत हुकम दीना। वह कहो कि नशा मुक्ति सारू हर लेवल माथे जवाबदेही तय करी जावणी चाहिए। श्री बागड़े कहो कि विश्वविद्यालय में आई नशीली चीजा काम लेवण वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावणी चाहिए। वह सरहदी हलका में ड्रोन रे जरिए नशीली चीजा भेजण माथे चिंता जताता थका इनने रोकण सारू असरदार कार्रवाई करण बाबती कहो। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली रा सरकारी बीडीएम अस्पताल रो दौरो कर वठे व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। वे न्यारा न्यारा वार्डा रो दौरो कर सुबिता देखा और एहलकारा सागे मीटिंग कर हालात रो जायजो लीनो। चिकित्सा मंत्री कहो कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए। वे कहो कि बेहतर इलाज रा सुबिता सारू साधना की कमी नहीं होनी चाहिए।
3: मेरा दो चीजों का फोकस है, नंबर एक चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएच है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
1: इन बीच बांसवाड़ा रा

0: करीब 70% पूरो फे सक्यो है चिन्ह ध्यान राखता थका सर्वेरी मियाद बधाई ची है। ई बीचे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा भीलवाड़ा में एक खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के राज्य सरकार रा लेवल में थे निकाय चुनाव करावण जुड़ो काम पूरो कर लियो चियो है।
1: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनर्सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता।
0: अरब मौसम राज्य उगनी और लंका उगनी हल्का माए भारियों घनी भारी बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग आवता दो दिन माए कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग माए बिरखा सारू चेतायो है। कोटा अजमेर उदयपुर जोधपुर और बीकानेर संभाग में ही बारिश चालती रहवन रो अनुमान है। लाडला 24 घंटा में राज्य उगनी और अतुणी हल्का में जोरदार पानी बरसियो। बांसवाड़ा में आज ही सवार हुई बिरखा बह रही है और माही बंधा में लगातार पानी आ रो है। भीलवाड़ा में ही छांटो छिटको बह रो है। पाली जिला में सादड़ी देसूरी और नानबेड़ा समेत कई ठोड़ा लाडला 3 दिन रुक रुक कर में बरस रो है। जिला रा जवाई बांध समेत न्यारा न्यारा बंधा और तलावा में लगातार पानी आ रो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के काल राज्य रा कई जिला में बारिश रो येलो और जालौर और सिरोही में ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला में थे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलिया। संसद में आई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में 3 केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशारी लत न जड़ खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माए आवता 2 दिन कठे कठे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल राज्य रा सगला जिला माए बरसात सारू चेतायो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फौजी भाइयों का प्रोग्राम जयमाला।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए पहले सुनते हैं फिल्म उपकार का गाना, आवाजी महेंद्र कपूर और साथियों की। गीतकार गुलशन बावरा हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी हैं।

0: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना।
1: और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना, गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का।
0: पहचान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर का था। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। यह आवाज है आशा भोसले की, फिल्म का नाम है खुशबू। गीत रचना गुलजार साहब की और धुन राहुल देव बर्मन की है।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

आशा भोंसले को आपने सुना, फिल्म का नाम था कस्मे वादी। गीत रचना गुलशन बावरा की थी और तर्ज राहुल देव बर्मन की थी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो झूठ, गीत एमजी हशमत का था और धुन शंकर जयकिशन की थी। हम आपको बताना चाहेंगे बॉम्बे टॉकीज में कल दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी गीत रचना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म त्रिशूल के लिए, शब्दकार साहिर लुधियानवी, धुन खयाम साहब की।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजना जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें।
1: नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें कार्यक्रम के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी का। राजीव साहब बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, नमस्कार।
1: अब पिछले एपिसोड में हमने कुछ नए फिल्मों की बात की थी, तो आज भी क्या नए फिल्मों के बारे में ही हम जानेंगे?
2: जी हाँ, नए फिल्मों में भी ऐसे गाने जैसे मैंने कहा था कि काफी है, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज का रोल भी था इसमें।
1: जी जी,
2: ये एक गाना जो हमने चुना है आज वो फिल्म हासिल का है।
1: अच्छा।
2: और ये हासिल की एक सिचुएशन है जो फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल सिचुएशन है, जहाँ पे ये सूफी गाना एक दरगाह में बज रहा है।
1: अच्छा।
2: इसके गायक है रूप कुमार राठौड़ और जावेद अली, और इसके जो बोल है वो इसरार अंसारी ने लिखे हैं। बड़ी ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जतिन ललित की। तू ही तू, तू ही तू मैं पेश करना चाहूँगा इस गाने को।

0: क्या बात है। हासिल फिल्म का ये सूफियाना कलाम जो इसरार अंसारी साहब का लिखा हुआ था हमने सुना, और अब हम किस गीत की ओर बढ़ रहे हैं राजीव साहब?
1: अब हम उस गीत की तरफ बढ़ेंगे जो, देखिए 2005 में एक जहर करके फिल्म आई थी।
0: हाँ हाँ, हाँ.
1: जो थोड़ी बहुत चली भी थी, उसके गाने अगर तुम मिल जाओ और वो लम्हे बहुत सुपरहिट हुए थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसमें एक ऐसा गाना था जो मेरे लिए बहुत पसंदीदा है और बहुत ही सोलफुल जिसे कहते हैं गाना है। और ये केके ने गाया था, जिसकी तुलना मैं तो बड़े सिंगर्स के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई सिंगर इस जनरेशन में था जो उस लेवल पर पहुंच सकता था वो था केके।
0: जी जी बिल्कुल।
1: ये तो कोइंसिडेंस है कि उनके इनिशियल किशोर कुमार से मिलते थे और वो सीखे हुए भी नहीं थे जैसे किशोर कुमार थे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: उनके गानों में जो रूह थी वो बहुत ही कम सिंगर्स में मिलती है हमारे जनरेशन की।
0: बिल्कुल सही।
1: और वो गाना मैं इसके लिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि इस बार इसका म्यूजिक डायरेक्टर है रूप कुमार राठौर, जो हासिल के गाने में एक सिंगर थे। इस गाने के गीत लिखे हैं शकील आजमी ने
0: जी।
1: और जैसे मैंने कहा फिल्म जहर, ए बेखबर ए बेखबर।

0: क्या बात है, जहर फिल्म का ये अनमोल गाना हमने याद किया और इसी के साथ आज का ये एपिसोड पूरा हो रहा है। राजीव जी, अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं।
1: थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
2: अनमोल यादें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं हास्य नाटिका बहादुरी। लेखक हैं राधे श्याम अग्रवाल, निर्देशक ब्रिजेंद्र मोहन।
1: अरे भाई कौन है?
2: अरे दरवाजा खोलो भी, अंदर से बंद किए बैठे हो।
1: अरे कौन साहब है, नाम पता तो बताइए।
2: भाई मैं हूँ यानी के चुगताई, खोलो भी।
1: अभी आया बस, आई गया।
2: जनाब दरवाजा पीटते हुए मेरे तो हाथ सुर्ख हो गए और चिल्लाते चिल्लाते गला खुश्क हो गया। यानी कि आप शाम होते ही दड़वे में घुस बैठते हैं? या अल्लाह, इंसान को इतना डरपोक क्यों बनाया है?
1: इंसान को इतना डरपोक क्यों बनाया है? हमारे यार रहने भी दो, देख ली तुम्हारी दिलेरी। हाँ, जब तुम्हारे यहाँ दिन दहाड़े चोर घुस पड़ा था तो जनाब लिहाफ को लपेट कर लेट रहे थे। हाँ
2: जी हाँ, आपको क्या मालूम मैं किस हालत में था? बिल्कुल निहत्था, यानी कि आस पास कोई छोटा मोटा डंडा भी नहीं था।
1: मोटा डंडा नहीं था? अरे डंडा नहीं सही, आपके हाथ पांव तो बदस्तूर थे। जैसा आपने अभी दरवाजा पीट डाला, अगर ऐसे ही आपने हाथों का इस्तेमाल उस बदमाश चोर पर करते तो मैं समझता कि आप वाकई दिलेर इंसान कहलाने के हकदार हैं।
2: अरे मुंशी जी, उसके पास पिस्तौल थी। पिस्तौल?
1: पिस्तौल?
2: जी हाँ।
1: अरे हाँ, मैंने बड़ी बड़ी पिस्तौलें देखी है, बड़ी बड़ी सुनी है और दागी भी है। पिस्तौल का चलाना कोई आसान नहीं है। हाँ, क्या बताऊं, ना हुई इस वक्त, वरना वो चलाकर दिखाता।
2: हाँ जी क्यों नहीं, आपका क्या कहना? सन 14 की लड़ाई में आप नहीं तो अंग्रेजों को जिताया था।
1: अरे 14 की लड़ाई ना सही, लेकिन मैं इतना डरपोक तो नहीं कि लिहाब में घुसकर तमाशा देखूं।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, जब कहीं मौका पड़ेगा तो फौरन आपको बुला
1: भेजूंगा।
2: छोड़िए भी इस तकरार को। ये बताइए कि आपके मोहल्ले का क्या हाल है?
1: यानी कि मेरे मोहल्ले का क्या पूछते हो? अरे बड़े बड़े बदमाश चोर डाकू अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रहता हूँ। मैं हाँ, इस मोहल्ले में क्या मजाल है कि कोई आंख उठाकर भी देख सके।
2: ठीक है मुंशी जी, ठीक है। हा? लेकिन अभी कल का ही किस्सा सुनिए। आपके मोहल्ले के आसपास का किस्सा है?
1: यानी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे मोहल्ले का किस्सा आप मुझे सुनाए? यानी कि बात मेरे पास भी

0: जी, और आपके यहाँ नस्र भी हो गया है।
1: अरे आप तो दरवाजे की कुंडी चढ़ाए बैठे रहते हैं, आपको क्या खबर बसंत की? कल ही की बात है कि आपके मोहल्ले में एक नहीं दो कत्ल हुए।
0: कत्ल? अमन क्या कह रहे हो, मेरे मोहल्ले में कत्ल?
1: वो जो घनश्याम बाबू थे ना, वो और उनकी बीवी का सारे जेब लेकर चंपत हो गया। अच्छा? मुंशी जी ऐसा खून हुआ है, हाय हाय हाय हाय हाय के क्या बताऊं।
0: किस जुगताई साहब, सही से बयान कर रहे हो ना, हम मजाक ना करो है। मैं खुद ये कहता था ना कि जमाना बड़ा नाजुक है और ये मोहल्ला तो अजीब वीरान जगह में है।
1: मैं खुद ही आपसे अर्ज कर रहा था ना कि इस मोहल्ले को छोड़ दो और किसी अच्छे से मोहल्ले में मकान ले लो।
0: अरे मियां, आप तो अपने ही आदमी ठहरे, आपसे क्या छिपाना, किसी अच्छे मोहल्ले में खुद ही मकान की तलाश में।
1: नहीं साहब, आप फौरन नया मकान ले लीजिए, जान है तो जहान है मियाँ। जी हाँ, इस मकान में बहुत खतरा है।
0: खतरा? यानी खतरा है? हाँ बिल्कुल, अभी परसों की बात है कि किस कदर तेज पानी बरस रहा था और हवा की साए साए लाहौल विलाकुत रात के 12 बजे यकायक ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कमरे की छत पर धम से कोई कूदा।
1: क्या कहा, परसों पानी बरस रहा था?
0: जी हाँ।
1: अरे भाई, उस दिन तो शहर में करीब करीब एक दर्जन चोरियां हुई थी। अल्लाह खैर करे कि आप बच गए।
0: आगे सुनिए। मैंने बड़ी हिम्मत से काम लिया।
1: अच्छा?
0: और फौरन दीवार पर लगे बिजली के बटन को दबा दिया। ये चक से मेरा दिल करके बैठने लगा। जी हाँ, बिजली नदारत और घूप अंधेरा।
1: बस कीजिए, मेरा तो पसीना छूटा जा रहा है।
0: घूप अंधेरा, लाहौल मिला हुआ।
1: अमा कोई है? अमा कोई है? अंदर कोई है?
0: जो भी होगा चला जाएगा। नाक बैठे बैठा क्यों मुसीबत मोल लेते हो?
1: कोई है जरूर, देखा कैसा खामोश हो गया।
0: चुप रहिए। हाँ चुप रहिए,
1: लेकिन मैं देखता हूँ, अभी देख लेता
0: हूँ। इधर आ जाइए, उस दरवाजे के पास से हट जाइए, कहीं कोई उधर से ना निकल पड़े हैं।
1: अरे आप मेरी फिक्र ना करें, आप उधर हो जाइए।
0: चाकू छुरी तो बावर्ची खाने में पड़े हैं। अरे कोई कमबख्त ऐसा ना करे कि मेरा ये चाकू छुरी ले आए और मुझे पर आदम के। हाँ
1: मेरा ख्याल है
0: क्या जरूर कोई डाकू है। अगर डाकू है तो उसके पास पिस्तौल तो होगी ही, और फिर अल्लाह
1: पुलिस चौकी पर अगर इतला हो जाए तो बस मामला ही बन जाए।
0: ऐसा करिए, मैं इस दरवाजे से बाहर जाता हूँ सीधे सड़क पर, और जोर से चलाऊंगा, आवाजें लगाऊंगा, मोहल्ले वाले इस बदमाश को घेर लेंगे।
1: बस सीधा छत पर खड़ा होकर आपके ऊपर थाए से पिस्तौल दाग देगा। जी हाँ, ऐसी अकमंदी हरगिज ना कीजिएगा।
0: बात तो आपने बड़े कायदे की सोची है। जी चाहता है कि आपको दाद दूं। वाह वाह,
1: देखिए, अब दूसरी तरकीब सुनिए। मैं अभी ललकारता हूँ। अम्मा, चारपाई में मच्छरदानी का वो बांस है ना, खोलिए अम्मा, खोलिए जल्दी खोलिए।
0: मगर बांस और पिस्तौल का क्या मुकाबला मियां?
1: अबे अभी अभी देखिए मुकाबला, बांस 6 हाथ का है, पिस्तौल 6 इंच की। आहिस्ता से, अरे आहिस्ता से खोलो।
0: बांस खोलो, यानी कि मैं भी बांस से उस पर हमला करूंगा। ठीक है, जब दोनों तरफ से बांसों पर हमला होगा तो उसके हाथ की पिस्तौल अपने आप जवाब दे जाएगी। हाँ। काम ही नहीं करेगी।
1: ये लीजिए। और आप इस दरवाजे को इस तरह से यूं ठीक खड़े हो जाइए पीछे। मैं दरवाजे की कुंडी खोल दूंगा और जैसे ही वो दरवाजे में आए वैसे ही हम दोनों तरफ से हमला कर देंगे, समझे? हाँ,
0: जी हाँ, तैयार है, मैं बिल्कुल तैयार है। आप खोलिए कुंडी।
1: ये
0: सामने वाले दरवाजे से बना दो जाने।
1: भागना आसान काम नहीं है, हम लोगों ने खटपट की नहीं, अपना इसी में किया तमाचा देखें।
0: पर जुगदाई साहब, ये तो बर्तन बांधे लिए जा रहे हैं, मैं बेगम को क्या मुंह दिखाऊंगा?
1: देखो भाई देखो, मेरी बेगम को तो मेरी जान प्यारी है, ना कि ये बर्तन बांधे।
0: जुगदाई साहब, ओ यार, वो सामने से आ रहे हैं, पांच छोड़ दो तू ऊपर उठा कर खड़े हो जाओ।
1: नहीं नहीं मुंशी जी नहीं, अब तो मुकाबला हो गई, मुश्किल बनने से काम नहीं चलेगा, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा।
0: जी हाँ, मेरा तो दम निकला, पसीना छूट रहा है, मैं जरा बासुनो मरा, मुझे बचाओ बेगम, मेरे बच्चे।
1: अरे मुकाबला तो हो गई,
0: पिस्तौल निकाल रहा है, मुझे गोली चला देगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
2: अरे कहाँ है चोर? आए हाय, क्या हुआ, क्या हुआ?
0: कुछ नहीं, बस मर ही गया था।
2: पसीना छूट रहा है, आपकी सांस तो चल रही है, खैर तो है, सोते हुए में ये क्या हुआ? खुदा खैर करे, मालूम होता है ख्वाब में डर गए।
0: बेगम, बेगम एक गिलास पानी दे दो, मेरा दिल धक धक धक धड़क रहा है, कितना भयानक सपना देखा।
2: ये लो पानी। अरे मैं भी तो सुनूं कि ख्वाब में क्या देखा। आए हाय, मैं तो डर ही गई, मैं तो समझी कि घर में आज कोई चोर घुस आया है और आपको उसने दबोच लिया है।
0: मुझे कोई दबोच ले? क्या मजाल किसी की, देख लिया बड़े बड़ों को, किसी की क्या मजाल के मुझे।
2: बस बस रहने भी दो शेखी, दिन दहाड़े एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो डर लगता है, फिर ऐसे बहादुर क्या सपने में डर कर चिल्लाया करते हैं?
0: हाँ, चिल्लाया करते हैं, सपने की बात अलग है जी। बेगम अगर तुमने ऐसा सपना देखा होता तो तुम्हारी तो जान ही निकल जाती, चिल्लाना तो दूर रहा।
2: बस बस देख ली, पर ये तो बताओ कि देखा क्या सपने में?
0: क्या बताऊं बेगम, इतना दर्दनाक बेचारा चुगताई मारा गया, बड़ी बेदर्दी से मारा गया, उसके तो कांटे और वो छुरी भौंकी गई कि ए है बेगम, मैं तो बस देखते ही बेहोश हो गया।
2: तो क्या चोरों ने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया?
0: मेरे ऊपर हमला? आमा क्या मजाल है किसी की जो मेरे ऊपर हमला करे। मैंने मच्छरदानी का बात इस खूबी से चलाया, इस खूबी से चलाया कि मेरे सामने तो ठहर ना सके। हाँ, कि मेरे सामने तो ना ठहर सके। हाँ, पर बेचारा चुगताई मारा गया।
2: यानी आप दूर खड़े तमाशा देखते रहे?
0: भाई तमाशा नहीं, उनके पीछे भागा, पर चुगताई चुगद ही रहा। हाँ, जान बूझ कर निगत्ता लड़भड़ गया। हाँ, भला ये भी कोई अकलमंदी की?
2: बड़े आए अकलमंद, मेरे भाई चुगताई चुगत और बेअकल, और आप हैं बड़े बहादुर, सारी खूबियां आप ही में समा गई हैं। देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, आप कम से कम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए।
0: बड़ा भाई यानी कि मैं? कुछ भी नहीं है बेगम, बड़ा तो मैं हूँ। मैं बेगम, मेरे साथ उसने अपनी बहन की शादी की है, क्या समझी?
2: समझी, पर आप भी समझ लीजिए कि उनकी शान के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। उनका ऐसा बहादुर दुनिया में मुश्किल से ही मिलेगा, डरपोक तो आप हैं।
0: मैं बेगम? मुंशी सआदत अली डरपोक? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, और फिर तुम जैसी नामाकूल बातें करती हो कि आप जी चाहता है कि मच्छरदानी का बांस उठा लूं और लगूं जौहर दिखाने। हाँ,
2: मैं भी नामाकूल हो गई, दिए जाइए जी भर के गालियाँ, पहले भाई को कोसा और अब मुझे।
0: अरे अरे,
2: न हुए बजन जिंदा वरना।
0: अरे अरे अरे, ओफो
2: क्या, सुबह होते ही मैं अपने मैके चली जाऊंगी, आप जानिए और आपका घर।
0: सुबह होने में तो अभी देर है बेगम, कहो तो इस वक्त मैं तांग ले आऊं। रो रो और जोर से रो, और जोर जोर से रो, ताकि आसपास वाले भी जान ले कि मुंशी जी ने आज बेगम को मारा है।
2: अजी मुंशी जी की क्या मजाल, जो नवाब मुश्ताक अली की बेटी पर हाथ उठाए, मैं कल ही चली जाऊंगी।
0: बेगम बेगम बेगम, बफा सुन, बात सुनो, फिर वही आवाज, फिर बिल्कुल वही आवाज जो सपने में सुनी थी। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ बेगम, कोई अंदर है, चुप रहो, खुदा के वास्ते।
2: क्या चुप रहूं, मुए ऐसे चोर तो रोज आते जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत है तो क्यों नहीं जाकर मुकाबला करते, देखूं आज तुम्हारी बहादुरी।
0: ओ जरा चुप भी रहो बेगम, वरना अगर वो पिस्तौल लेकर धरी आ गया तो फिर जैसे सपने में उसने हमला किया था, जैसे चुगताई पर मेरे ऊपर अगर वैसे ही हमला कर दिया तो मैं गया।
2: आपने सपने में ऐसी ही खड़बड़ सुनी थी क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल बेगम, बिल्कुल ऐसी सुनी थी, फर्क इतना था कि उस वक्त चुगताई मेरे पास था और अब चुगताई नहीं उसकी बहन है। जरा होशियार बेगम, बेगम जरा होशियार।
2: अच्छा अच्छा तो क्या उतारूं, मच्छरदानी के पास? देखो तो कौन हमला करता है और कौन मारा जाता है।
0: बेगम बेगम बेगम, देखो देखो देखो, कोई पक्ष खींच रहा है। बेगम बेगम, ये दरवाजा है ना, दरवाजे की कुंडी खोल कर जरा झांको तो, इतने में मैं जरा लंगोट कस लूंगा।
2: अरे रहने भी दो ये शेखियां, जब तक लंगोट कसोगे तब तक सारा सामान भी उठा ले जाएगा, पहले जरा ललकार तो दो।
0: बेगम बेगम बेगम, ये काम तुम करो, है ये काम तुम करो, ललकारो तुम, देख मैं लूंगा, मैं देख लूंगा, कुछ तुम करो तो, बेगम तुम कुछ करो वरना मैं तो दबा हो जाऊंगा। बेगम
2: देख ली बस तुम्हारी दिलेरी, तुम तो ये लो चूड़ियां पहन लो, मैं इन चारों से खुद निपट
0: लूंगी। बेगम बेगम, तुम नहीं तुम नहीं तुम नहीं, बेगम तुम मत जाओ उस कमरे में। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चलकर ललकारो तुम, मैं पीछे से आकर हमला कर दूंगा, घबराना नहीं है। बेगम जरा होशियारी से।
2: अरे मेरे साथ आओ तो।
0: बेगम बेगम दरवाजा मत खोलो, कहीं वो इधर से ना आ जाए और हम पे ना टूट पड़े।
2: मैं देखती हूँ मुए कैसे सामान उठाते हैं। ए ये लो, मैंने दरवाजा खोल दिया।
0: अरे ये क्या लाहौल विला कुवत, यानी यानी कि ये बिल्ली बनती है।
2: जी हाँ बिल्ली।
0: तो क्या ये बदमाश बिल्ली अंदर थी?
2: जी हाँ बिल्ली।
3: अभी आपने हास्य नाटिका सुनी बहादुरी, लेखक थे राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक थे ब्रिजेंद्र मोहन। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है अनु मलिक का संगीत, जमीर काजमी की रचना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म विजय पथ के लिए।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक को आपने सुना। फिल्म का नाम था विजय पथ, गीतकार जमीर काजमी थे और संगीतकार थे अनु मलिक।
1: जब किसी हमला ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

केकी की आवाज थी, फिल्म का नाम था सॉरी भाई। गीत रचना अमिताभ वर्मा की थी और धुन बनाई थी गौरव दयाल ने। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।

0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आँखों ही आँखों में इशारा हो गया।
3: दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे बॉम्बे टॉकीज में कल यानी 25 जुलाई को दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की गई एक बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और अब चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है धड़कन, इसे समीर ने लिखा है और धुन नदीम श्रवण की।

ये था आज का चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमा बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
6: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
7: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क

0: मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ये स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम जवानी दीवानी, गीत रचना आनंद बख्शी की और तर्ज राहुल देव बर्मन की है।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। और आइए अब सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम आराधना।

किशोर कुमार के बाद लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है सनी, शब्द आनंद बख्शी के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना, बोल इंदिवर के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका। आपके लिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, खय्याम साहब का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन। मेरा रंग

अपनी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1960

कार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। ये फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार की चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: करता हूँ।
1: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। हर इंसान का किसी न किसी वस्तु से भी गाढ़ा प्रेम होता है। उस वस्तु के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि कई बार अपनों से भी ज्यादा उस वस्तु विशेष का ख्याल रखा जाता है। पर अगर वो खो जाए तो

वो सामान जो हमें सबसे प्यारा हो हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो मानो हर रिश्ते नाते सुख सुविधा के बाद भी हमें चैन कहाँ। उसकी खोज में खुद तो लगते ही हैं, अपनों को भी लगा देते हैं।

0: भाई ये तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि संभाल कर रखी चीजें ही सबसे ज्यादा गुम क्यों होती हैं, और ये गुम हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? क्या वो कहीं छुपकर हमें देखती रहती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम उनकी परवाह करते भी हैं या नहीं?
1: तो बेचारे बिना

कई बार हमारे सामने दुनिया जहान की चीजें रखी होती हैं, पर मन मन तो वहीं अटका है उस गुम हुई चीज के साथ। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही ख्याल कि आखिर वो गई तो गई कहाँ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या गुम हुई चीजें भी मेले में गुम बच्चे की तरह घर लौटने को बेताब रहती होगी? क्या वो भी मिलने वाले को अपने मालिक का अता पता बताती होगी? फिर कुछ इस तरह होती होगी घोषणा,

0: कोई चीजें जैसे ही किसी को मिलती है उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। शायद उन्हें भी याद आ जाती हैं अपनी गुम हुई चीजें, तभी तो वो झूम कर बताने लगते हैं मिली हुई चीज का हाल, खोजने लगते हैं उनका पता जिसकी है ये चीज।
1: मिला है।

एक बार जो गुम हुई चीज मिल जाए तो यूं लगता है जैसे सारी उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। इस जहान में कुछ भी नहीं है नामुमकिन, बस शिद्दत से खोजा जाए तो मिल सकता है कुछ भी। दिल का चैन, खुशियां, सुख, मन की शांति, और दिल कह उठता है।

0: आपकी हर तलाश हो पूरी, इसी कामना के साथ दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा का नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल

0: को 43.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:05:20 का समय हुआ है। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।